नमस्कार श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह सुबह हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि यह सुबह हमें उस आजादी की याद दिलाती है जिसके लिए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आइए आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर सबसे पहले अपने तिरंगे को नमन करें, उन वीर सपूतों की श्रद्धांजलि को याद करें और अपने दिलों में देश प्रेम की भावनाओं को और मजबूत करें। तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं है साथियों, बल्कि यह हमारे साहस, शांति, समृद्धि और एकता की पहचान है। आइए श्रोता साथियों गर्व से कहें, मेरा देश मेरी शान, मेरा तिरंगा मेरी पहचान। आप सभी श्रोता साथियों को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज के सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर, जिसे आप सुन पाएंगे अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर मंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, एक बार फिर से राष्ट्र की कमान हिंदुस्तानी अपने हाथ धरे। आओ स्वतंत्रता दिवस का मान करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को वाग रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहाँ हर जुबा पर सर्वधर्म सद्भाव और जय हिंद का नारा है, निश्चल पावन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा है। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस न...

0: साथियों, मिलजुल कर कदम बढ़ाएं, नए भारत का सपना सजाएं। न भेदभाव, न कोई दूरी, सबकी खुशहाली सबसे जरूरी। ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, देश का भविष्य चमकाएंगे। देश हमारा, जिम्मेदारी हमारी, यही है सच्ची देशभक्ति हमारी। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। हमारी शुरुआती जो चंद पंक्तियां रही थी उन्हीं से आप समझ गए होंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार बच्चे कैसे बने।
1: बिल्कुल,
0: बातें कशिश इस विषय पर ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि विषय से रूबरू गीत से पहले करा चुके हैं साथियों की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार बच्चे हम कैसे बन सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे मन में उन वीरों की तस्वीर आ जाती है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन श्रोता साथियों, आजादी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। आजादी हमें ये जिम्मेदारी भी देती है कि हम अपने देश, समाज, परिवार और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, किसान होंगे या डॉक्टर, वैज्ञानिक, अधिकारी, कलाकार या समाज के मार्गदर्शक भी वे बनेंगे। इसलिए बच्चों को केवल अच्छी पढ़ाई करना ही नहीं साथियों, बल्कि अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी सिखाना जरूरी है।
1: बिल्कुल, यही कशिश बात आती है कि जिम्मेदार बनने के लिए किसी बड़ी उम्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे छोटी छोटी आदतों से जिम्मेदारी सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अपने कमरे और घर को साफ रखना, अपनी किताबों और स्कूलों की चीजों को संभाल कर रखना, माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना, छोटे भाई बहनों की मदद करना और अपने काम को समय पर पूरा करना।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, ये सभी जिम्मेदारी के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर बच्चा अपने छोटे छोटे काम स्वयं करने की आदत डालता है तो उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर देश के विकास में योगदान देने की क्षमता बनाती है। कहना चाहेंगे कृषि श्रोता साथियों से कि एक जिम्मेदार बच्चा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास भी करता है।
0: बिल्कुल,
1: उसे ये जानना चाहिए कि हमारा देश कैसे चलता है, ग्राम पंचायत क्या करती है, स्कूल और अस्पताल क्यों जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए और समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार क्यों करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: किताबों के साथ साथ बच्चों को समाचार, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, पुस्तकें और अपने आसपास के अनुभव से भी सिखाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता विकसित करना भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अंजलि जी अगर बात करें कि देशभक्ति केवल नारे लगाने का नाम नहीं है तो साथियों को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का अर्थ केवल राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराना या देशभक्ति के गीत गाना नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: असली देशभक्ति तो साथियों हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देती है। जैसे कि जब कोई बच्चा सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, पानी बर्बाद नहीं करता, पेड़ पौधों की देखभाल करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है और साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता है, तब अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा होता है अंजलि जी। इसी तरह श्रोता साथियों, ईमानदारी से पढ़ना, अपने काम को मेहनत से करना और भविष्य में अपनी क्षमता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना भी देश सेवा का एक रूप है।
1: बिल्कुल कशिश, एक जिम्मेदार बच्चे की पहचान उसके आसपास के वातावरण से भी होती है। बच्चे अपने घर, स्कूल और गांव को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कूड़े को इधर उधर फेंकने की बजाय उचित स्थान पर डालना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, शौचालय का इस्तेमाल करना और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हर बच्चा यह सोच ले कि मेरे गांव की सफाई केवल किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, तो पूरे समुदाय में बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। पानी, जंगल, जमीन, हवा और पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार हैं। आज बच्चों को बचपन से ही कशिश पानी बचाने, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की आदत डालनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: नल खुला छोड़ना, पानी को बेवजह बहाकर या पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना जिम्मेदार व्यवहार नहीं है। एक बच्चा अपने घर में पानी बचाने की बात कह सकता है, स्कूल में पौधा लगा सकता है और अपने दोस्तों को भी प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम हमारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, तो ये बातें हमारी आगे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार बच्चे कैसे बने, उसको लेकर हमारी आपसे बातचीत चल रही है।
1: जी हाँ।
0: यही अब बात आती है मोबाइल और इंटरनेट का जिम्मेदार उपयोग करना, यानी कि कशिश आज के बच्चों के जीवन में मोबाइल और इंटरनेट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: इंटरनेट ज्ञान का बड़ा माध्यम है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना जरूरी है। बच्चों को मोबाइल का उपयोग पढ़ाई, जानकारी और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कराना चाहिए। अनजान लोगों से निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी के फोटो या वीडियो बिना अनुमति के साझा नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर मिली हर जानकारी को सच नहीं मानना चाहिए। श्रोता साथियों, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन परेशान किया जा रहा है या उसे कोई संदिग्ध संदेश मिल रहा है, तो उसे यह बात छिपाने के बजाय माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदार नागरिक वही होता है श्रोता साथियों, जो दूसरों के अधिकार और भावनाओं का सम्मान करे। बच्चों को जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति, गांव या परिवार के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हर बच्चे को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और अवसर पाने का अधिकार है। स्कूल में भी कशिश किसी कमजोर विद्यार्थी का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए।
1: जी जी।
0: किसी नए बच्चे को अपने साथ खेल में शामिल करना और किसी जरूरतमंद साथी की सहायता करना एक जिम्मेदार बच्चे की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात सही कही। यही अगर हमारे साथियों को हम बताएं, तो श्रोता साथियों, अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ना भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। देखते हैं कि हमारे गाँव और आदिवासी क्षेत्रों की अपनी समृद्ध संस्कृति अंजलि जी, साथ ही लोकगीत, लोक कथाएं, पारंपरिक ज्ञान, खेती की पद्धतियाँ और जीवन शैली रही है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में जिम्मेदार बच्चे अपनी संस्कृति को जाने, बुजुर्गों से सीखे और अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही उन्हें ये समझना भी जरूरी है कि हर परंपरा को केवल इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है। जो परंपराएं समाज में प्रेम, सहयोग, प्रकृति संरक्षण और समानता बढ़ाती है, उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र केवल चुनाव के समय मतदान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का आधार होता है अंजलि जी, अपनी बात रखना और दूसरों की बात सुनना।
0: जी जी।
1: ऐसे में बच्चों को स्कूल में मिलकर निर्णय लेना, अपनी बात शांतिपूर्वक रखना और दूसरों की राय का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज का बच्चा जब अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझेगा, तभी वह कल एक जागरूक नागरिक बन सकेगा।
0: बिल्कुल, यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि कई बार बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन सवाल करना, सिखाना भी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बच्चे को किसी बात की जानकारी नहीं है तो वह पूछ सकता है। अगर उसे कोई गलत काम दिखाई देता है तो वह उचित तरीके से उसके बारे में बता सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर उसे किसी नियम का उद्देश्य समझ नहीं आता तो वह उसके बारे में जान भी सकता है। लेकिन सवाल करते समय भाषा और व्यवहार में सम्मान बनाए रखना भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: जिम्मेदार बनने का मतलब हर बात चुपचाप सह लेना नहीं है। अगर किसी बच्चे को बाल मजदूरी, हिंसा, भेदभाव, नशे या किसी गलत गतिविधि का सामना करना पड़ रहा है, वह ऐसा कुछ देखे तो उसे किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति या संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को खुद किसी जोखिम भरी स्थिति में जाकर कार्रवाई करने के बजाय सुरक्षित तरीके से मदद मांगना सीखना चाहिए। समय का सही उपयोग बच्चे को जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। इसलिए श्रोता साथियों, पढ़ाई, खेल, आराम, परिवार के साथ समय और रचनात्मक गतिविधियों के लिए संतुलित दिनचर्या बनाना अच्छी आदत है।
1: जी हाँ।
0: हर समय मोबाइल पर रहना या बिना उद्देश्य के समय बिताना बच्चों की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जो बच्चा आज अपने समय का सम्मान करना सीखता है, कशिश वही भविष्य में अपने अवसरों का सही उपयोग कर पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से ये कहा जा सकता है साथियों कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें नागरिकों के बीच समानता, शिक्षा और सम्मान और सहयोग था अंजलि जी। आज हमारे सामने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी केवल सरकार या बड़े लोगों की नहीं है। बच्चे भी अपने स्तर पर इसमें योगदान जरूर दे सकते हैं। एक बच्चा ईमानदारी से पढ़कर, अच्छी आदतें अपनाकर, प्रकृति को बचाकर, दूसरों की मदद करके और गलत कामों से दूर रहकर देश के भविष्य को मजबूत बना सकता है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार बच्चा वह नहीं है जो हर काम में सबसे आगे दिखाई दे, बल्कि वह है जो अपने कर्तव्यों को समझे, अपने फैसलों के परिणामों को जाने और जरूरत पड़ने पर दूसरों के काम आए।
1: बिल्कुल,
0: वह अपने अधिकारों की बात करता है तो दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। वह अपनी सफलता के साथ समाज की प्रगति के बारे में भी सोचता है। आज अगर हमारे बच्चे स्वच्छता, ईमानदारी, अनुशासन, समानता, प्रकृति संरक्षण, सहयोग, संवेदनशीलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं कशिश, तो आने वाला भारत निश्चित रूप से अधिक मजबूत और बेहतर होगा।
1: बिल्कुल,
0: आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन आजादी की गरिमा बनाए रखना हमारी निरंतर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की शुरुआत बचपन से ही होती है। इसलिए हर बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि वह छोटा जरूर है, लेकिन उसकी अच्छी आदत, उसका अच्छा विचार, उसका छोटा सा प्रयास भी देश के भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज का जिम्मेदार बच्चा ही कल का जागरूक नागरिक है और आज के जागरूक नागरिकों से ही मजबूत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता है।
1: जी हाँ दिले जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: साथियों, स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर है जो एक नागरिक के रूप में हमारे देश के प्रति हमारी है। आज़ादी का अर्थ तभी पूरा होगा साथियों, जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें और समाज में जागरूकता के साथ साथ भाईचारे का संदेश भी फैलाएं।
1: जी हाँ साथियों, आप सभी को इन चंद पंक्तियों के साथ वागर रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार
1: और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आजादी के संघर्ष से युवाओं को क्या सीख मिलती है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत संघर्षों, त्यागों, साहस और संकल्प को याद करने का अवसर है जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, 15 अगस्त यानी कि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस, ये वो दिन है जब हम अपने तिरंगे को गर्व से लहराते हैं, राष्ट्रगान के साथ सम्मान पूर्वक खड़े होते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या स्वतंत्रता दिवस केवल झंडारोहण, मिठाई और देशभक्ति गीतों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। स्वतंत्रता दिवस हमें एक सवाल भी देता है कशिश, और वो सवाल है कि आखिर हमारे स्वतंत्रता संग्राम से आज के युवा क्या सीख सकते हैं।
0: जी
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम में ये देशभक्ति गीत को।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और बात आज जैसा कि हम कर रहे हैं हमारे आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर। तो जागृति जी, जैसा कि गीत से पहले आपने हमारे युवा साथियों को बताया था कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक सवाल लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: और वो सवाल ये है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से आज के हमारे जो युवा साथी हैं वो क्या सीख ले रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना होगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। आज हम शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने, अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी को सामान्य मान लेते हैं।
1: बिल्कुल कशिश।
0: लेकिन जागृति जी, ये अधिकार हमेशा हमारे पास नहीं थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने हमें ये सिखाया है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है।
1: जी हाँ,
0: हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था युवा साथियों, जहाँ हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, जहाँ भेदभाव कम हो, जहाँ शिक्षा और अवसरों के रास्ते खुले हो और जहाँ देश अपने आप स्वयं फैसले ले सके।
1: बिल्कुल कशिश, इसीलिए आज की पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम आजाद हैं, बल्कि यह भी है कि हम इस आजादी का उपयोग किस तरह कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, क्या हम अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं? क्या हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं? यही स्वतंत्रता दिवस की असली सीख है।
0: बिल्कुल।
1: भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमें सबसे बड़ी सीख देता है कशिश, मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना।
0: जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजादी की राह आसान नहीं थी। लंबे संघर्ष, कठिन परिस्थितियाँ और अनेक चुनौतियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सामने थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर भी हमारे सेनानियों ने अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ा साथियों। ऐसे में आज के युवाओं के सामने भी अलग अलग चुनौतियाँ हैं जागृति जी। किसी के सामने पढ़ाई का दबाव है तो किसी के सामने रोजगार की चिंता है, कोई अपने करियर को लेकर असमंजस में है तो कोई अपने सपनों को लेकर परिवार और समाज की अपेक्षाओं के बीच रास्ता खोज रहा है। ऐसे समय में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम हमें याद दिलाता है कि बड़ी मंजिलों के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ,
0: हर सफलता तुरंत नहीं मिलती, कभी रास्ता कठिन होगा, कभी असफलता मिलेगी और कभी लोग हतोत्साहित करेंगे दोस्तों।
1: जी हाँ,
0: लेकिन यदि लक्ष्य सही है और प्रयास ईमानदार है तो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना हमें चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, और दूसरी सीख है एकता में शक्ति। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि एकता में ही शक्ति होती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम अलग अलग हो गए तो हमारी जो शक्ति है वो बिखर जाएगी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण ताकत थी एकता। अलग अलग क्षेत्रों में, भाषाओं में, समुदायों और पृष्ठभूमियों से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता के बड़े उद्देश्य के लिए अपनी भूमिका निभाई थी कशिश।
0: बिल्कुल।
1: ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हमारे बीच भी दूरी पैदा हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। युवा जब मिलकर काम करते हैं कशिश, तो छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन में बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि गांव की स्वच्छता हो, शिक्षा का प्रसार हो, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर रक्तदान के प्रति जागरूकता ही क्यों न हो, या किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो श्रोता साथियों, ये सभी सामूहिक प्रयास हमेशा अधिक प्रभावी होते हैं और ये हमें एक अच्छी सीख भी देते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जागृति जी आजादी के संघर्ष को लेकर हमारे युवा साथियों से बात कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आप बने रहें साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हम बात कर रहे थे, आजादी के संघर्षों से युवाओं को क्या सीख मिल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हमने जाना था कशिश, की स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, साहस के साथ अपने लक्ष्य पर हम किस तरह से टिके रहे ये भी बात की थी, एकता में शक्ति को लेकर बात की थी, यही जानते हैं अहिंसा, धैर्य और शांतिपूर्ण बदलाव को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा महात्मा गांधी जी के विचारों के बिना पूरी नहीं हो सकती है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: उनके विचार हमें ये बताते हैं कि परिवर्तन के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही विचार भी बहुत जरूरी है। आज के युवा यदि किसी समस्या से असहमत है तो वे अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन साथ ही दूसरे के विचारों का सम्मान भी कर सकते हैं। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर किसी विचार से असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति का मतलब अपमान नहीं होना चाहिए। विचारों की लड़ाई विचारों से हो, नफरत से नहीं, और यही लोकतांत्रिक समाज की खूबसूरती है। कशिश
1: जी, हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों में त्याग और जिम्मेदारी की सीख भी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम हमें ये सिखाता है कि बड़े उद्देश्यों के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सुविधाओं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के बारे में भी सोचना पड़ता है। आज के युवाओं के लिए त्याग का अर्थ हमेशा कोई बड़ा बलिदान देना नहीं है, कभी कभी त्याग का अर्थ होता है साथियों अपने समय का थोड़ा हिस्सा समाज के लिए देना, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करना, पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना, गलत सूचना को आगे न फैलाना और अपने काम को ईमानदारी से करना। हम देखते हैं कि देशभक्ति केवल भावनाओं से नहीं हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आजादी के संघर्ष से युवाओं को यह भी सीख मिलती है कि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज हमारे पास शिक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक अवसर भी है।
1: बिल्कुल।
0: किताबों के साथ इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधनों ने ज्ञान तक पहुँच को आसान बना दिया है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर बात सच नहीं होती श्रोताओं, इसलिए युवा किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी को जांचे। एक जागरूक युवा केवल अपने अधिकारों को नहीं जानता बल्कि संविधान, लोकतंत्र, कानून और अपने कर्तव्य को भी समझता है।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षित युवा अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए अवसर पैदा करता है। कशिश
1: जी, हाँ जागृति जी, साथ ही अगर दोस्तों को बताएं तो आजादी के संघर्ष में एक सपना था स्वतंत्र भारत का सपना।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, आज हमारे युवाओं के पास भी अपने अपने सपने हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई शिक्षक, कोई किसान के लिए नई तकनीक विकसित करना चाहता है, तो कोई ऐसे भी हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और कोई जागृति जी समाज में सेवा के माध्यम से बदलाव लाना चाहता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन दोस्तों, सपना केवल देखने से पूरा नहीं होता, उसके लिए योजना, मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखने की जरूरत भी होती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर युवा खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं और वो ये है कि मेरे सपने केवल मेरे लिए हैं या उनसे मेरे समाज और देश को भी लाभ हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हमारे व्यक्तिगत सपनों में साथियों सामाजिक उद्देश्य जुड़ जाए तो वही सपना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बन सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ आजादी का एक महत्वपूर्ण अर्थ है आत्मनिर्भरता। श्रोताओं, अगर हमारे युवा अपने कौशल को विकसित करते हुए नए हुनर सीखते हैं कशिश, और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की संभावनाओं को भी समझते हैं, तो वे अपने लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आज डिजिटल तकनीक, कृषि, हस्तशिल्प, उद्यमिता, मीडिया, शिक्षा, पर्यटन और अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर मौजूद है। जरूरत है तो अपनी क्षमताओं को पहचानने की।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि डिग्री के साथ कौशल, ज्ञान के साथ अनुभव और सपनों के साथ मेहनत, यही आधुनिक आत्मनिर्भरता की पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथी दोस्तों, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान होना भी जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक आनंद तभी होता है जब समाज का हर व्यक्ति सम्मान और अवसर के साथ जीवन जी सके। यदि किसी बुजुर्ग को सहायता चाहिए साथियों, तो उनके साथ खड़ा होना भी समाज सेवा है। यदि किसी गांव में स्वच्छता की समस्या है तो हमारे युवा साथी मिलकर अभियान भी चला सकते हैं, और ये भी एक देशभक्ति है जागृति जी।
0: बिल्कुल।
1: कहा जा सकता है कि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश उनके लोगों से बनता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वतंत्र भारत हमें संविधान देता है, संविधान हमें अधिकार देता है और साथ ही जिम्मेदारियों कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। आज के युवा अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्य दोनों को समझना होगा। अपनी बात रखना जरूरी है श्रोताओं, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करते हुए ये ध्यान रखना होगा हमें कि हमारे कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को नुकसान न पहुंचे। अच्छा नागरिक वही है जो अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी समझता हो।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों को आज की देशभक्ति के बारे में सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों देशभक्ति का मतलब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लगाना नहीं होता। देशभक्ति तब भी है जब एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है। देशभक्ति तब भी है जागृति जी जब एक युवा अपने काम में ईमानदारी रखता है। देशभक्ति श्रोता साथियों तब भी मानी जाएगी जब कोई नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकेगा।
0: बिल्कुल,
1: देशभक्ति वही है जब कोई युवा रक्तदान, शिक्षा, पर्यावरण या समाज सेवा के अभियान में योगदान देगा। जब हम किसी जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होंगे साथियों, तो ये भी एक देशभक्ति का ही उदाहरण है।
0: जी हाँ,
1: याद रखिए कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का काम नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हम भारत के वर्तमान भी हैं और भविष्य भी है। हमारे हाथ में मोबाइल भी है लेकिन उसी हाथ में बदलाव की ताकत भी है। हमारे पास तकनीक भी है लेकिन उसके साथ विवेक भी होना चाहिए। हमारे पास सपने हैं लेकिन उन सपनों के साथ जिम्मेदारी भी होनी होगी। हमारे पास बोलने की आजादी भी है श्रोता साथियों, तो सच और सम्मान के साथ बोलने की जिम्मेदारी भी है। हमारे पास अवसर है तो उन अवसरों का उपयोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें करना होगा।
1: जी हाँ।
0: आजादी के संघर्ष ने हमें एक स्वतंत्र देश दिया। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम इस देश को शिक्षित, जागरूक, आत्मनिर्भर, संवेदनशील और मजबूत बनाए।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वतंत्रता दिवस हमें केवल अतीत याद करने के लिए नहीं आता, ये हमें वर्तमान को बेहतर बनाने और भविष्य को मजबूत बनाने की प्रेरणा भी देता है। हम उन सभी ज्ञात अज्ञात लोगों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष और योगदान ने भारत की स्वतंत्रता की राह को मजबूत किया।
1: बिल्कुल,
0: आज तिरंगे को देखते हुए केवल गर्व महसूस न करें श्रोताओं, बल्कि अपने मन में एक छोटा सा संकल्प भी लें कि मैं अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहूंगी, मैं अपने समाज में सकारात्मक योगदान दूंगा या दूंगी, मैं भेदभाव के बजाय समानता को चुनूंगी, मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझूंगा या समझूंगी और अपने ज्ञान, हुनर और मेहनत से भारत के विकास में योगदान दूंगा या दूंगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो साथियों हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और देशभक्ति गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही स्वतंत्रता दिवस को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसपड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्ते।

0: श्रोता साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। जैसा कि शुरुआती चंद पंक्तियों से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर। श्रोता साथियों, आज का हमारा विषय है आपसे बातचीत का 80 साल की आजादी, स्वराज की राह पर हमारा अगला कदम।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आजादी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हर पीढ़ी की एक नई जिम्मेदारी है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन की बीड़ियों से मुक्ति पाई थी। उस दिन करोड़ों भारतीयों ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था अंजनी
1: जी। जी
0: ऐसा भारत जहाँ निर्णय हमारे अपने हो, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे और देश अपने पैरों पर खड़ा हो। आज आजादी के 80 साल पूरे होने के अवसर पर हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हमारी आजादी की यात्रा केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सीमित है या अब हमें स्वराज की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाना है?
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, इन सवालों के जवाब आज हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य मिलेंगे। लेकिन शुरुआत में कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए क्यों ना एक प्यारा सा देशभक्ति गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें?
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत।

0: साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं 80 साल की आजादी, स्वराज की राह पर हमारा अगला कदम।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, 80 साल की आजादी केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं है, यह आत्मचिंतन, मूल्यांकन और नए संकल्प का समय है। इन वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग, तकनीक, स्वास्थ्य, संचार और लोकतंत्र के क्षेत्र में देश ने लंबी यात्रा तय की है। गांव तक सड़कें, बिजली, संचार और डिजिटल सुविधाएं पहुंची है। भारत आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन जागृति जी, विकास की इस यात्रा के साथ कुछ सवाल भी हमारे सामने आए हैं कि क्या हर गांव आत्मनिर्भर हो रहा है, क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित हैं, क्या स्थानीय लोगों को अपने विकास में निर्णय लेने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है, इसी के साथ क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से समझते हैं। इन सवालों के बीच स्वराज की अवधारणा हमारे सामने एक दिशा बनकर आती है।
0: बिल्कुल अंजलि,
1: तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि स्वराज का अर्थ केवल अपना शासन नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि आपने बताया कि स्वराज का अर्थ केवल अपना शासन नहीं है, तो श्रोता साथियों, इसका अर्थ अपने ऊपर अपना शासन है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं व्यापक भी है। सच्चा स्वराज तब होगा जब व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में सक्षम हो,
1: बिल्कुल
0: गांव अपने विकास की दिशा तय करने में सक्षम हो और समुदाय अपने संसाधनों की रक्षा तथा उनका सही उपयोग करने में सक्षम हो। स्वराज का अर्थ है जिम्मेदारी, सहभागिता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान। अंजलि, अगर हम अपने गांव की समस्या को केवल सरकार की जिम्मेदारी मानकर छोड़ देंगे तो श्रोताओं, स्वराज अधूरा रह जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम अपने आसपास गंदगी देखते हुए भी उसे साफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम न उठाएं, स्थानीय संसाधनों की रक्षा न करें और ग्राम सभा में भाग न लें, तो हम स्वराज की भावना को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तब मजबूत होगा जब शासन और समाज दोनों मिलकर विकास की जिम्मेदारी निभाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आजादी के बाद भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। गरीबी, अशिक्षा, खाद्य संकट, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं देश के सामने थी।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे भारत ने इन चुनौतियों से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाए। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के विस्तार ने नई पीढ़ी के लिए अवसर खोले। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने भारत को नई पहचान दी। संचार क्रांति और डिजिटल तकनीक ने गांव और शहर के बीच दूरी कम की। लेकिन श्रोता साथियों, विकास का अगला चरण केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए। अब जरूरत ऐसे विकास की है जिसमें प्रकृति, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल अंजलि, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये केवल एक भावनात्मक कथन नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को समझने का आधार भी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, देश की बड़ी आबादी आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसीलिए स्वराज की वास्तविक शुरुआत गाँव से ही होनी चाहिए। एक मजबूत गांव वो है जहां लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो, ग्राम सभा सक्रिय हो, स्थानीय समस्याओं पर सामूहिक चर्चा हो और समाधान के लिए लोग मिलकर आगे आए।
1: जी जी,
0: गांव में पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार जैसे मुद्दों पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब गांव अपने संसाधनों की पहचान करके उनका संरक्षण और बेहतर उपयोग करना सीखेंगे, तब स्वराज की नींव और मजबूत हो जाएगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि 80 साल की आजादी, स्वराज की राह पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था, गांव मजबूत होंगे तो स्वराज मजबूत होगा। यही बात आती है जल, जंगल और जमीन की रक्षा की। श्रोता साथियों, स्वराज की राह प्राकृतिक संसाधनों से होकर गुजरती है।
1: बिल्कुल,
0: पानी, जंगल और जमीन केवल आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी है। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज कई क्षेत्रों में पानी का संकट बढ़ रहा है, भूजल का स्तर प्रभावित हो रहा है और जल स्रोत पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में श्रोता साथियों, पानी की हर बूंद को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्षा जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, जल स्रोतों की सफाई और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग जैसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह जंगल केवल लकड़ी या ईंधन का स्रोत नहीं है, वे हमारी जलवायु, मिट्टी, जल स्रोत और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्वराज का अर्थ यह भी है कि हम प्रकृति पर अधिकार जमाने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखें।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि स्वराज का एक महत्वपूर्ण आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता है। जब किसी गांव में स्थानीय स्तर पर उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो लोगों की बाहरी निर्भरता कम हो जाती है। स्थानीय कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, छोटे व्यवसाय, पारंपरिक कौशल और स्थानीय सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है।
0: जी जी,
1: हमें स्थानीय उत्पादों को सम्मान देना होगा। स्थानीय कारीगर, किसान और छोटे उद्यमी केवल अपनी आजीविका नहीं चला रहे होते हैं बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाते हैं।
0: जी जी,
1: तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय को सम्मान और स्थानीय को अवसर, ये सोच स्वराज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बना सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से भी तय होता है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने, सवाल पूछने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज के लिए ऐसी शिक्षा जरूरी है जो बच्चों को अपने समाज और प्रकृति से जोड़े, उन्हें संविधान, लोकतंत्र, अधिकारों और कर्तव्यों की समझ दे, उन्हें स्थानीय समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित करे। जब शिक्षित नागरिक अपने गांव, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे तब लोकतंत्र, स्वराज दोनों मजबूत होंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तकनीक, शिक्षा और नई सोच ने युवाओं के सामने अनेक अवसर खोले हैं। लेकिन जागृति जी, युवा शक्ति का अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, देश और समाज के विकास में योगदान देना भी युवा शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवा अपने गांव में शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, डिजिटल जागरूकता, खेल, नवाचार और स्थानीय रोजगार जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज का युवा यदि यह सोच ले कि समस्या मेरी भी है और समाधान में मेरी भी भूमिका है तो स्वराज की यात्रा बहुत तेज हो सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। इसी तरह हम हमारे महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी से भी स्वराज मजबूत होता है। श्रोताओं कहना चाहेंगे कि स्वराज का अर्थ ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ लोकतंत्र में भागीदारी ही सच्ची नागरिकता है। जैसे कि लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने का नाम नहीं है, लोकतंत्र निरंतर भागीदारी की प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल,
1: सड़क पर कचरा न फेंकना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानूनों का पालन करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सभी स्वराज की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सीढ़ियां है। 80 साल की आजादी के बाद भारत एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां डिजिटल तकनीक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अंजलि, मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी तथा सेवाओं को लोगों के करीब जरूर पहुंचाया।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। गलत सूचना को बिना जांचे आगे बढ़ाना समाज में भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता और तथ्य की जांच आज के नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का उपयोग शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा और सामाजिक जागरूकता के लिए किया जाए तो यह स्वराज को नई ताकत दे सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, भारत की पहचान उसकी विविध संस्कृति, लोक परंपराओं, भाषाओं, कलाओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली में है। विकास का अर्थ अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। हमें आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाते हुए अपनी लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी सुरक्षित रखना होगा।
1: बिल्कुल,
0: विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के पास प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का गहरा अनुभव है। उनके पारंपरिक ज्ञान से हमें जल, जंगल, खेती और जैव विविधता के संरक्षण की अनेक सीख मिल सकती है। इसलिए भविष्य का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ आधुनिकता की गति और परंपरा की गहराई जो है साथ साथ चले।
1: बिल्कुल, आजादी के 80 साल हमें एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा करते हैं श्रोताओं। हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी भी है।
0: बिल्कुल,
1: आने वाले वर्षों में हमारा लक्ष्य ऐसा भारत होना चाहिए जहाँ गाँव आत्मनिर्भर हो, किसान सम्मान के साथ आगे बढ़े, बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, युवाओं को अवसर मिले, महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबर भाग लें, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे और हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा कि स्वराज कोई एक योजना या एक दिन का अभियान नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि हमारे अपने घर, गांव और व्यवहार से होती है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, यदि एक व्यक्ति पानी बचाता है, एक परिवार कचरा सही तरीके से संभालता है, एक युवा गांव की समस्या के समाधान में आगे आता है अंजलि, एक ग्राम सभा सक्रिय होती है और एक समुदाय अपने संसाधनों की रक्षा का संकल्प लेता है, तो यही छोटे कदम मिलकर बड़े स्वराज का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, 80 साल की आजादी हमारे लिए गौरव का विषय है। यह उन अनगिनत लोगों के संघर्ष, त्याग और सपनों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाना केवल इतिहास को याद करना नहीं बल्कि उनके सपनों को वर्तमान जीवन में उतारना है। आज जरूरत इस बात की है श्रोता साथियों कि हम आजादी को केवल अधिकार के रूप में न देखें बल्कि जिम्मेदारी के रूप में भी समझें। स्वराज का रास्ता सरकार से समाज तक, समाज से गांव तक और गांव से प्रत्येक नागरिक के व्यवहार तक जाता है। 80 साल पहले हमने परतंत्रता से आजादी हासिल की, अब हमारा अगला कदम ऐसा भारत बनाना होना चाहिए जो सोच में स्वतंत्र, निर्णय में सक्षम, अर्थव्यवस्था में मजबूत और प्रकृति के प्रति संवेदनशील और नागरिक जिम्मेदारी में सजग हो।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आइए 80 साल की आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम केवल तिरंगा फहराने का संकल्प न लें बल्कि अपने भीतर जिम्मेदारी की भावनाओं को भी मजबूत करें, क्योंकि आजादी हमें मिली है लेकिन स्वराज हमें मिलकर बनाना है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता केवल वो दिन नहीं जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आकाश में लहराया था। स्वतंत्रता वो चेतना है जो हमें अपने देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है।
0: जी जी।
1: हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था उसे साकार करना आज हमारी जिम्मेदारी है। आजादी के 80 साल बाद हमें ये मन में इच्छा रखनी होगी कि हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, संविधान के मूल्यों को मजबूत करेंगे और देश की एकता, अखंडता तथा विविधता की रक्षा करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझेंगे और छोटे छोटे प्रयासों से भारत को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है लेकिन उसकी रक्षा और उसे मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तिरंगा केवल हमारे हाथों में नहीं, हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे संकल्पों में भी लहराना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले देशभक्ति गीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बना वंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

कार्यक्रम घूमर हमारे वारी अमरी हित्ते बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। आप सब हम रीडियो हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में। जिम के बहन बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी गये हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारी कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है 15 अगस्त एटले

0: આપણી જે બોનેહી એણનું સન્માન, શિક્ષા અને આત્મનિર્ભરતા, અહંકારની સમજ ની આઝાદી એણને હરતે હોવી જોઈએ ને હરતે ઈ આપણા દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપી શકે. તો આના વિશે માતે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી વિશે વિશેષજ્ઞ એટલે મધુબોન જોડી રહી. તો સપ્તકી પહેલે આપણે હામરી લણની વાતે ને મોરે કર આપણી વાતે. મેમ નમસ્કાર. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागड़ रेडियो परिवार में. जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूँगी.
1: धन्यवाद अंजलि मुझे वागड़ रेडियो में आमंत्रित करने के लिए. जैसा कि तुमने पहले बता ही दिया कि मेरा नाम मधु है और मैं जयपुर में रहती हूँ और लंबे समय से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती रही हूँ अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के और वर्तमान में मैं वागधारा के साथ जुड़ के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए किस तरह से चीजों को देखा जाना चाहिए, उनके स्वास्थ्य को, उनके पोषण को, बच्चों की शिक्षा को, किस तरह की भूमिका निभा रही हूँ.
0: बिल्कुल. तो जैसा कि मैम आप महिलाओं को लेकर बच्चों को लेकर ढेर सारे कार्य करती हैं, यही आज हम देख रहे हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. तो आज सबसे पहले कार्यक्रम में आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि स्वतंत्रता दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है और महिलाओं की इसमें क्या भूमिका है.
1: बहुत ही सही सवाल पूछा मैंने, क्योंकि स्वतंत्रता केवल अपने अधिकारों को जानने का नाम नहीं है बल्कि अपने परिवार, समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी नाम है. हम भूल जाते हैं, हम अधिकारों को याद रखते हैं लेकिन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसे नहीं भूला जाना चाहिए ना. फिर अगर अपन वागड़ क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो हमारी महिलाओं का परिवार और समाज एक महत्वपूर्ण आधार है. तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण और परिवार और समुदाय से जुड़े निर्णयों में भाग लेकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
0: बिल्कुल.
1: जरूरत पड़ने पर वो अपनी बात पंचायत और ग्राम सभा तक भी पहुंचाए. दूसरी महिलाएं जो है गांव की, उनको भी जागरूक करे, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाए. क्योंकि जब महिला अपनी बात कहती है और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होती है तो समाज मजबूत होता है.
0: बिल्कुल.
1: और जैसे तुम जानते भी हो कि जब समाज मजबूत होगा तो लोकतंत्र खुद ब खुद मजबूत होने लगेगा.
0: बिल्कुल मैम. तो जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता जो दिवस हम मना रहे हैं, तो इसमें महिलाओं की क्या इसमें भूमिका है और किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना और भी योगदान दे सकती हैं. यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ग्राम सभा और अन्य कोई भी मंच हो वहाँ पर भाग लेना क्यों जरूरी है और किस तरीके से उन्हें अपनी आवाज को मजबूत करना चाहिए.
1: ग्राम सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है. वो एक ऐसा मंच है जहाँ पर गांव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: छोटे छोटे परिवारों से गांव बनता है और वो छोटे छोटे परिवार जब एक मंच पर आएंगे और मंच पे आकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेके बात करेंगे, जैसे पानी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, आंगनबाड़ी या बच्चों से जुड़े कोई भी मुद्दे हो सकते हैं जो डेली की रूटीन में या अपन दिनचर्या के हिस्से में जुड़ी हुई चीजें होती है जिनको लेके वो समस्याओं का सामना करती है.
0: बिल्कुल.
1: तो महिलाएं क्या होती है, सीधे तौर पर इन चीजों के संपर्क में आती है और उनके अनुभव और उनकी आवाज इन निर्णयों को और भी अधिक सार्थक बना सकता है.
0: बिल्कुल.
1: इसलिए ग्राम सभा में जाना केवल भागीदारी नहीं है बल्कि वहाँ जाकर अपनी बात रखे, बोले और अपने गांव के भविष्य को तय करने में अपनी भूमिका निभाना ही सक्रिय महिला नागरिकता स्वतंत्रता के सही अर्थ को मजबूत करती है.
0: बिल्कुल मैम. तो जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से महिलाओं का ग्राम सभा के मंच पर जुड़ना, सहयोग करना और अपनी आवाज को मजबूत करना जरूरी है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाना भी आजादी और विकास का हिस्सा है.
1: बिल्कुल अंजलि, मैं यही कहूंगी कि संस्कृति और परंपराओं को बचाना वास्तव में आजादी और विकास का हिस्सा है. इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि विकास का अर्थ ये नहीं है कि अपनी जड़ों से दूर हो जाओ. ना, हमारी वागड़ क्षेत्र की बोली, यहाँ के प्रचलित लोकगीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन और जीवन शैली को देखने के तरीके जो है हमारी, एक परंपराएं यहाँ की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी महिलाओं को उन परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो समानता, सहयोग और प्रकृति के सम्मान की सीख देती है, और जो भेदभाव या असमानता को बढ़ावा देती है उन्हें बदलने का साहस भी रखना होगा हमारी महिलाओं को।
0: बिल्कुल।
1: अपनी पहचान को बचाते हुए आगे बढ़ना ही वास्तविक विकास है।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से स्वतंत्रता में हमारी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी शामिल होता है, यही मैम मैं अब जानना चाहूंगी कि महिलाएं अपने बच्चों को स्वतंत्रता का सही अर्थ कैसे समझा सकती हैं?
1: बिल्कुल, बचपन एक ऐसा समय होता है, वहीं से बचपन में ही एक इंसान की आगे बढ़ने की

0: हमें करना नहीं है। आजादी के साथ जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जुड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को ये बताएं कि देश के स्वतंत्रता सेनानी के क्या संघर्ष थे, त्याग की क्या कहानियां थी, उनको जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करने की सीख दें, और वो अपने व्यवहार में भी अपनाएं। महिलाएं जब खुद अपने व्यवहार में अपनाएंगे, बच्चे देखेंगे और देख के भी सीखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटे और बेटी दोनों को समान अवसर देने की शुरुआत घर से ही होती है। तो जब बच्चे इस तरह की चीजें घर में होते हुए देखेंगे तो वो समान अवसर देना भी स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में शामिल कर सकेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह से अगर हम देखें तो बच्चों को प्रकृति, गांव और समाज की जिम्मेदारी समझ में आना भी जरूरी है। इस तरह माँ स्वयं बच्चों में जिम्मेदार नागरिक बनने की नींव रख सकती है, अपने व्यवहार में बदलाव लाके, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके और इन चीजों को अपना के।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी से हमें अवगत करवा रहे हैं, यही बात आती है मैम कि महिलाओं की शिक्षा को देश की आजादी से जोड़कर आप किस तरीके से देख सकती हैं?
0: देखो अंजलि, जो हमारा देश है कि आजादी के बाद से सबसे बड़ी जरूरत थी कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। महिलाओं की शिक्षा उस आजादी को वास्तविक अर्थ देती है। शिक्षा महिला को केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी देती है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक मामलों में बेहतर निर्णय तो ले ही सकती है। इसके साथ साथ जैसे हमने ग्राम सभा की बात की थी, ग्राम सभा में भागीदारी निभाना भी जरूरी है।
1: जी जी,
0: जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो ग्राम सभा में भागीदारी भी निभाएगी और साथ में उसकी जानकारियाँ अलग अलग तरीके से खुलने लगेगी, जानकारियां प्राप्त करने के अवसर मिलने लगेंगे। तो सरकारी योजनाओं और अपने अधिकारों को समझकर परिवार और समाज के फैसलों में अपनी आवाज मजबूती से रख पाएगी। वागड़ में जो हमारी बेटियां हैं उनकी पढ़ाई को बीच में रोकने की बजाय उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है।
1: जी जी,
0: साथ ही बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं उनकी भी जरूरत के अनुसार नई नई चीजें सीखने के उनको अवसर मिलने चाहिए। जैसे आज के समय में डिजिटल और वित्तीय जानकारी भी महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी है। ये एक लड़की की शिक्षा केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत करती है।
1: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे वागड़ की जो महिलाएं हैं वो स्थानीय स्तर पर देश के विकास में क्या योगदान दे सकती हैं?
0: देखो, विकास का और खासकर देश के विकास को अगर हम देखें तो ये नहीं है कि बड़े बड़े शहर जो हैं वही विकास को देख सकते हैं। विकास गांव से शुरू होता है। तो वागड़ की महिलाएं खेती, पशुपालन में बेहतर तरीकों को अपनाकर परिवार की आय बढ़ा सकती है।
1: जी जी,
0: और स्थानीय उत्पाद जो होते हैं ना उनको बाजार से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर बना सकती है।
1: बिल्कुल,
0: और ये तब हुआ जब एक हमारी वागड़ की महिला शिक्षा प्राप्त करेगी, शिक्षा से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएगी, ग्राम सभा के मंच से जुड़ेगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, महिलाओं के योगदान से, महिलाओं के विकास से, गांव के विकास से। इसी तरह से वो अगर स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ेगी तो वो सामूहिक रूप से मिलकर काम को बढ़ावा देगी और ग्राम सभा में भाग लेकर स्थानीय मुद्दों पर अपनी आवाज मजबूती से रख सकती है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे गांव के साथ साथ देश का भी विकास को देखा जा सकता है।
1: बिल्कुल मैम,
0: इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगी अंजलि, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना और खासकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में और आदिवासी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जल संरक्षण के जितने भी पुरानी परंपराएं होती थी
1: जी जी,
0: उसमें महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान देकर आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना सकती है। हमें ये समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा बड़े शहरों में होना जरूरी नहीं है।
1: जी जी,
0: अपने गांव में सकारात्मक बदलाव लाना भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
1: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने हमें बताया कि महिलाएं जो हैं वो स्थानीय स्तर पर देश की आज़ादी में अपना क्या योगदान दे सकती हैं या देश के विकास में अपना क्या योगदान दे सकती हैं। यही अब बात आती है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को लेकर आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: अगर अपन देखें भारत के परिवारों को, समाज को, समुदाय को, अगर हम देखें तो महिला हर जगह पे एक धुरी का काम करती है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो धुरी जितनी मजबूत होगी, परिवार, समाज, समुदाय सब उतने ही मजबूत होंगे। तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को परिवार की जरूरतों के पीछे नजरअंदाज नहीं करें। वो तभी अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती है जब वो स्वस्थ होगी, है ना। तो उसे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दे। और ये महिला खुद तो दे ही, परिवार को भी इसमें साथ देने की जरूरत है। उसके पति जो है, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, महिला जैसे साथ है और परिवार के सदस्य हैं, उनको भी उसमें भागीदारी निभानी जरूरी है। और साथ ही अगर वो किसी परेशानी का सामना कर रही है तो उसको चुपचाप सहना नहीं है। उसके बजाय वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मान लो कि स्वास्थ्य को लेके वो परेशान है तो वो उचित स्वास्थ्य सेवा से मदद ले।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, सवाल पूछे, अपनी बात रखिए और अपने लिए निर्णय लेना आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल।
0: आत्मसम्मान का अर्थ है अपने साथ सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखना और अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं करना।
1: बिल्कुल।
0: परिवार में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व मिलना जरूरी है जितना अन्य सदस्यों को मिलता है। स्वस्थ, आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान से भरी महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि परिवार और समाज को भी मजबूती देती है।
1: बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को लेकर महिलाओं का क्या योगदान है उसको लेकर ढेर सारी बातें जानी, तो अंत में 15 अगस्त पर आप पागर क्षेत्र की महिलाओं और बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें कि वो किस तरीके से जागरूक बने रहे और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे?
0: सबसे पहले मैं महिलाओं को, बेटियों को ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपनी आवाज को पहचाने, अपने अंतर की आवाज को पहचाने और अपने अधिकारों को जानो, समझो। और आप केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं बल्कि अपने गांव, समाज और देश के भविष्य को दिशा देने वाली एक शक्ति है। अपने उस शक्ति को पहचानो। मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, बागड़ क्षेत्र के हर व्यक्ति को ये संदेश देना चाहूंगी कि बेटियों को पढ़ाइए, उनके सपनों को उड़ान दीजिए, उन्हें सवाल पूछने और अपनी बात रखने के अवसर दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही बेटों को भी समानता और सम्मान की सीख दें। शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की जानकारी को अपनी ताकत बनाइए और गांव के विकास में अपनी भागीदारी को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना अधिकार भी समझिए।
1: बिल्कुल।
0: एक दूसरे का साथ दें, महिलाओं को अपने संघर्ष में अकेला नहीं पड़ने दें। हमारी आजादी तभी सार्थक होगी जब हम हमारे घर की महिला बेटी सम्मान के साथ जी सकेगी, अपनी बात कह सकेगी, निर्णय लेने में भागीदारी निभाएगी और अपने सपनों को पूरा कर सकेगी।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मैम आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी से अवगत करवाया है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी अंजलि कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं चाहूंगी कि हमारे बागड़ क्षेत्र की हर महिला और हर बेटी एक जागरूक नागरिक बने। धन्यवाद।
1: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણે વેસ્ટમાં મધુબન જોડે તક હતો ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા આકાની વાતે વતાડી હે એણે માધ્યમ તકી આપણે જાણ્યું કે આઝાદીનું સહી મતલબ હું હે સમ્માન અવસર ને આત્મનિર્ભરતા ને હાથે હરતે આપણી બોને અગાડી વધી શકે ને એને સાથે આપણી જે બોને હે એ અણદાડે હરતે આ સંકલ્પ લઈ શકે કે સૂર અને સૂર્યને વેસ્ટમાં કારે ભી ફરક નહીં કરેંગા ને બેને સમાન અવસર આલેંગા। તો ભાઈ બોનો આશા કરા હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનું। તો સૂટો તો પડ પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટો।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, आजादी केवल खुली हवा में सांस लेने का नाम नहीं है। आजादी उस सोच का नाम है जो डर के आगे झुकती नहीं। आजादी केवल अधिकार पाने की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को समझकर आगे बढ़ने की भी पहचान है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम जीवन से जुड़े उन सवालों पर बात करते हैं जो हमें केवल सुनने नहीं बल्कि सोचने और कुछ नया करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जी हाँ, 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष, बलिदान और उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र देखने का सपना देखा था। लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम इतिहास की घटनाओं को दोहराने के बजाय खुद से एक अलग सवाल पूछते हैं। आज हम जानेंगे कि देश आजाद है, लेकिन क्या हमारी सोच भी आजाद है। बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से देशभक्ति गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। जैसा कि गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है, हमें आजादी मिली है, अब अपनी सोच को आजाद हमें करना है। और जैसा कि आज कार्यक्रम का हमारा पहला सवाल था कि देश आजाद है लेकिन क्या हमारी सोच भी आजाद है? जी हाँ दोस्तों, क्या हम डर से आजाद है? क्या हम भेदभाव वाली सोच से आजाद हुए हैं? क्या हम दूसरों की नकल करने की मजबूरी से आजाद हुए हैं? क्या हम रूढ़ियों और गलत परंपराओं पर सवाल करने का साहस रखते हैं? और क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता से समझते हैं? आज का सपनों की उड़ान कार्यक्रम जो है वो इसी सोच की आजादी को समर्पित है। जानते हैं कि आजादी का सही अर्थ केवल बंधन से मुक्ति नहीं है। आजादी जो शब्द है वह सुनते ही हमारे मन में स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी की तस्वीरें आती हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आजादी का एक और अर्थ भी है, वह है अपने भीतर की उन सीमाओं से मुक्त होना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार हमारे रास्ते में कोई बाहरी दीवार नहीं होती, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे मन में डर होता है। डर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लड़की होकर ऐसा करोगी? हमारे गांव के बच्चे इतना आगे नहीं जाते। ये वाक्य दिखाई नहीं देते, लेकिन कई बार यही हमारी सोच के चारों ओर दीवार बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस दिन इंसान लोग क्या कहेंगे के डर से आजाद हो जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई उड़ान जन्म लेती है। अब यही बात आती है कि क्या हम अपनी सोच के गुलाम हैं? जी हाँ, आज हमारे पास शिक्षा है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, अवसर है, फिर भी कई बार हम पुरानी धारणाओं के कारण नए रास्तों से डरते हैं। यदि कोई युवा खेती में नया प्रयोग करना चाहता है तो उसे कहा जाता है कि यह हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। यदि कोई लड़की अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो इससे कहा जाता है कि लड़कियों को इतना बाहर निकलने की क्या जरूरत है। यदि कोई बच्चा अपनी रुचि के अलग क्षेत्र में जाना चाहता है तो कहा जाता है कि सब लोग जो कर रहे हैं वही करो। लेकिन बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है श्रोता साथियों, जहाँ कोई व्यक्ति पहली बार पूछता है क्यों। स्वतंत्रता का जश्न मनाना हमारा अधिकार है, तिरंगा फहराना भी गर्व की बात है, लेकिन साथियों, देशभक्ति के गीत सुनना मन में उत्साह भरता है। लेकिन देशभक्ति केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। जब हम अपने गांव को साफ रखते हैं, यह देशभक्ति है। जब हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते तो यह देशभक्ति है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह देशभक्ति है। जब हम बेटियों और महिलाओं को सम्मान करते हैं तो ये भी देशभक्ति है। जब हम बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तो यह देशभक्ति है। जब हम गलत जानकारी को बिना जांचे आगे नहीं फैलाते तो यह भी जिम्मेदार नागरिकता है। तो दोस्तों, 15 अगस्त और हमारी जिम्मेदारी कुछ इस तरीके से हमें समझने की जरूरत है। बातें निरंतर और भी कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है आजादी और युवा की। जी हाँ, देश की युवा पीढ़ी के सामने आज एक अलग तरह की चुनौती है। आज लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं, आज लड़ाई है निराशा से, नशे से, गलत जानकारी से, भेदभाव से, अंधी नकल से और उस सोच से जो कहती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। युवा अगर इस सोच को बदल दे तो यकीन मानिए श्रोता साथियों, उनके सामने संभावनाओं की पूरी दुनिया खुल सकती है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे समाज में हर लड़की को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का कितना अवसर मिलता है। आजादी का अर्थ यह नहीं कि परिवार या समाज की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि बेटियों को भी शिक्षा, सम्मान, सुरक्षित वातावरण, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक लड़की जब पढ़ती है, अपने फैसले समझदारी से लेती है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसका पूरा परिवार उससे सीखता है। जी हाँ, जिस घर की बेटी अपने सपनों के बारे में खुलकर बात कर सके, वह घर केवल बड़ा नहीं, सोच से भी समृद्ध होता है। साथियों, हमारा जो गांव है वो देश की आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन गांव को मजबूत बनाने के लिए केवल सरकार की योजनाएं पर्याप्त नहीं है, गांव के लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। ग्राम सभा में सवाल पूछना, अपने अधिकारों को समझना, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना, जल और जंगल की रक्षा करना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सब हमारे सामुदायिक जीवन को मजबूत करते हैं। सच्ची आजादी तब महसूस होती है जब लोग अपने गांव के विकास में अपनी भूमिका समझते हैं। बच्चों को आजादी का अर्थ भी हमें समझाने की जरूरत है, क्योंकि बचपन से ही जो नींव हम बच्चों के अंदर डालते हैं वो आगे चलकर

बनी रहती है और देशभक्ति की नींव हमें बच्चों में बचपन से ही डालनी है। श्रोता साथियों, बच्चों से केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम 1947 में आजाद हुए थे, उन्हें हमें यह भी बताना होगा कि आजादी का मतलब है कि अपनी बात सम्मान से कहना, दूसरों की बात सुनना, गलत चीज का विरोध करना, अपने अधिकार जानना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और अपने देश व समाज के प्रति जिम्मेदार बनना। बच्चे आज के छोटे नागरिक हैं, लेकिन कल की दिशा उनके हाथों में होगी। इसी के साथ दोस्तों, क्या आजादी का मतलब मनमानी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब है नहीं। आजादी और मनमानी एक जैसे नहीं है। यदि मेरी आजादी से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सड़क पर नियमों का पालन करना होगा, सार्वजनिक जगह पर अनुशासन रखना होगा, दूसरों की निजता का सम्मान करना होगा, किसी के साथ भेदभाव न करना, यही जिम्मेदार स्वतंत्रता है। जी हाँ, अधिकार हमें ताकत देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उस ताकत को सही दिशा देती है। साथियों, अपनी सोच को आजाद करने के कुछ 5 रास्ते हैं आसान से, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला, खुद से सवाल पूछिए कि हर पुरानी बात गलत नहीं होती, लेकिन हर पुरानी बात को बिना समझे मानना भी जरूरी नहीं। सीखना जारी रखिए, क्योंकि ज्ञान सोच की सीमाएं खोलता है। डर को पहचानिए, क्योंकि हर डर के पीछे रुकना जरूरी नहीं है। दूसरों की नकल से बचिए, अपनी परिस्थितियां और अपनी क्षमता को पहचानिए। अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच्ची प्रगति तब है जब आपकी सफलता का लाभ आपके आसपास के लोगों तक पहुंचे। श्रोता साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल झंडा फहराने का नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी स्वतंत्रता का अर्थ उतारने का संकल्प लें। हम डर के कारण सही बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे, हम भेदभाव को सामान्य नहीं मानेंगे, हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, हम अपने गाँव, अपने समुदाय और अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाएंगे। हम बच्चों और युवाओं को सपने देखने के साथ उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराना चाहिए, हमारे विचारों में भी लहराना चाहिए। देश की आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन एक बेहतर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जिस देश का युवा जागता है, उस देश का भविष्य जागता है। जिस समाज की सोच बदलती है, उस समाज की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगती। 15 अगस्त हमें केवल यह याद नहीं दिलाता कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, यह हमें यह सोचने का अवसर देता है कि उस स्वतंत्रता का उपयोग हम किस तरह कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें एक स्वतंत्र देश दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे एक जिम्मेदार, संवेदनशील और शिक्षित और मजबूत समाज में बदलने में अपना योगदान दें। आजादी का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमारे ऊपर कोई शासन न करे, आजादी का अर्थ यह है कि हम अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि गलत बात के सामने चुप न रहें, अपने डर को इतना छोटा करें कि वह अपने सपनों से बड़ा न हो, अपनी जिम्मेदारियों को इतना समझें कि हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे के अधिकार को नुकसान न पहुंचाए। इस 15 अगस्त को जब तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, तो एक पल के लिए हमें अपने आप से पूछना है कि मैं अपने देश की आजादी को अपने जीवन में किस अच्छे काम के रूप में उतार सकता हूँ। शायद आपका उत्तर बहुत छोटा हो, किसी बच्चे को पढ़ाना, एक पेड़ लगाना, गांव की सफाई में योगदान देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, बेटी को पढ़ने देना, किसी गलत अफवाह को आगे न बढ़ाना, या अपने भीतर के डर को पहली बार चुनौती देना। यही छोटी छोटी शुरुआतें मिलकर बड़े भारत का निर्माण करती है। श्रोता साथियों, आजादी का जश्न एक दिन मनाइए, लेकिन आजादी की जिम्मेदारी हर दिन निभाइए। तिरंगा हाथ में उठाना गर्व है, लेकिन तिरंगे के मूल्यों को जीवन में उतारना उससे भी बड़ा गर्व है। आइए इस 15 अगस्त पर हम केवल यह न कहें कि भारत माता की जय, बल्कि अपने हर अच्छे काम से यह साबित करें कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और उसके भविष्य के प्रति सच में जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, बातें आज कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: साथियों, इनकलाब का नारा है भारत देश हमारा है, सजा वो तिरंगा घर घर प्यारे, मना लो आजादी का त्योहार सारे, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए हमारा भारत महान है। देश को आगे बढ़ाना है, स्वतंत्रता का दिवस मनाना है। जी हाँ श्रोता साथियों, जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं।
1: जी बिल्कुल श्रोता साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार के साथ में, क्योंकि ये जो दिन है वो हमारे लिए त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमें आजादी मिली थी और कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया था।

0: जाता आए शाम सवेरा वो भारत।
1: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि कशिश गीत से पहले हमने हमारे श्रोता साथियों को बताया था कि आज कार्यक्रम के माध्यम से वाग्धारा संस्था के कई सदस्य हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाग्धारा संस्था के सचिव महोदय श्रीमान जयश्री जोशी। तो सर, आपका स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम में। और जैसा कि आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, तो आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से आज़ादी हमें मिल तो चुकी है, लेकिन क्या हमारी सोच और इन सारी चीज़ों से हम आज़ाद हो पाए हैं?
2: जी, तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वागड़ रेडियो श्रोताओं को, वागड़ वासियों को और वागड़ रेडियो टीम को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। हमारा आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। और अंजलि, आपने बहुत सही बात कही कि हम किससे आज़ाद होना चाहते हैं, क्या हमारी मानसिक गुलामियाँ किस प्रकार की हैं, हम हमारी आदतों पे अनुशासन में, हमारे जीवन शैली में किस प्रकार से हम हमारे गुलामी से, और हम जिस स्वराज की बात कर रहे हैं, स्व अनुशासन, वो हम में कितना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम उस पर विजय नहीं पालेंगे, हम उस पर जीत नहीं हासिल कर पाएंगे, तब तक हमारे लिए आज़ादी पूरी नहीं है। फिर भी आज मैं वागड़ रेडियो के माध्यम से पुनः आज की शुभ वेला में बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं वाग्धारा परिवार की ओर से, वागड़ रेडियो परिवार को, वागड़ रेडियो के श्रोताओं को और वागड़ वासियों को।
1: बिल्कुल,
2: जय हिंद, जय स्वराज।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि सर का बहुत ही प्यारा सा संदेश कृषि श्रोता साथियों को रहा कि किस तरीके से स्वतंत्रता का दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरीके से हमें स्व अनुशासन को अपनाने की जरूरत है। बातें कार्यक्रम में और भी इसी तरह बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
3: जी हाँ साथियों, तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, जैसा कि गीत से पहले हमारे बीच में श्रीमान जयश्री जोशी जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमने जाना, इसी बीच कार्यक्रम के माध्यम से कशिश परमेश जी पाटीदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो भी आज के उपलक्ष्य पर श्रोता साथियों को संदेश देना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: और जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आज हम बहुत ही पावन पर्व मना रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य पर आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: तो मेरे वागड़ के सभी श्रोता एवं मेरे देश के सभी श्रोताओं को मैं वागड़ रेडियो 90.8 FM के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और मैं यही चाहूँगा कि हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो हमें एकजुट होना बहुत ही जरूरी है, और जब हम एकजुट होंगे तो आने वाला समय हमें हरा नहीं सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें हमारे देश के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे घर के लिए हमें एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर जब हम एकजुट होंगे तो हमें किसी भी चीज से हम हार नहीं सकते हैं, कोई भी हमें चाहिए उसको हम हासिल करके ही रहेंगे। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा, हर व्यक्ति को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें एकजुट होना है, एकजुट रहना है और ये संदेश पूरे देश में पहुँचाना है। तो इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है कि किस तरीके से हमें एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में भी हम सब एक हुए थे तभी हमें आज़ादी मिली है। और हम कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति है। तो आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि कशिश अभी हमारे बीच में परमेश जी पाटीदार जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है कि किस तरीके से हमें एकजुट होकर रहना है और अपने जीवन में आने वाली कोई भी समस्या हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम सभी मिलकर पूरा नहीं कर सकते हैं। हम सब अगर एक होकर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसका निवारण हमें मिल पाता है। और जैसा कि जब हम फील्ड विजिट करते हैं तब भी हम देखते हैं कि गाँव में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, अगर वो समस्या का निवारण नहीं होता है तो समुदाय के जो लोग हैं वो एकजुट होते हैं, वो सरकार को ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन के बाद भी जा जाकर वो पूछते रहते हैं कि हमने आपको जो ज्ञापन दिया था उसका क्या हुआ, समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी चीजों को लेकर हमें कार्य करने की जरूरत है और निरंतर हमारे जो प्रयास रहेंगे वही हमारे गाँव को, हमारे देश को विकास की ओर लेकर जाएंगे। तो बातें इसी तरह कार्यक्रम में और भी श्रोता साथियों से बनी रहेंगी। और आज बहुत ही प्यारा सा दिन हम मना रहे हैं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें याद कर रहे हैं, तो इसी बीच एक और प्यारे से गीत के माध्यम से हम उन्हें याद करते हैं और किस तरीके से हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश की संस्कृति क्या है, उसको लेकर एक प्यारा सा गीत हम सुनना चाहेंगे।

0: कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ वही दाव।
1: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमारे साथ में वाग्धारा संस्था के परमेश्वर पाटीदार जुड़े हुए थे, इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटेल जी। तो उनके माध्यम से हम जानते हैं कि आज का ये जो दिन हम मना रहे हैं उसका क्या महत्व है। तो सर नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागर रेडियो परिवार में।
2: धन्यवाद
1: सर। जैसा कि आज आप कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम स्वतंत्रता का पावन पर्व मना रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में आप हमारे समुदाय साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, पहले तो वागड़ रेडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं और आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भी जब जैसे गांधी जी ने कहा स्वराज की जब बात की है ना,
1: बिल्कुल
2: स्वराज का मतलब जो गांधी जी ने बताया था कि सिर्फ स्वराज की कल्पना के केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में नहीं की है। स्वराज का मतलब गांधी जी ने बोला था कि लोग अपने जीवन, अपने गांव और अपने विकास के फैसले को स्वयं भागीदार बने।
1: बिल्कुल,
2: इस चीज को लेके जब अपन ने बोला है तो मैं सिर्फ युवा साथियों को ये देना बोलना चाहूंगा कि आज के दिन में अपने युवाओं से भी बहुत कहना अपन चाहते हैं, है ना, कि आज के युवा जो भटक रहे हैं, आज के युवा खेती छोड़ रहे हैं, तो आज के युवा सिर्फ आप केवल नौकरी खोजने वाले युवा न बने।
1: बिल्कुल,
2: है ना, बल्कि अपने गांव और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने वाले युवा बने। अपने मोबाइल का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के अवसर के लिए रहे। मोबाइल को बहुत सारी चीज देखने को मिलती है लेकिन ज्ञान इसके अंदर ज्यादा ढूंढे। अपने गांव की समस्या को पहचानिए। किसी किसान को बाजार की जानकारी चाहिए तो बाजार की जानकारी दीजिए। किसी बुजुर्ग को सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो सरकारी योजनाओं की जानकारी दीजिए।
1: बिल्कुल,
2: और किसी बच्चे को शिक्षा की मदद चाहिए तो अपने आप उनको मदद कीजिए शिक्षा के लिए। एक युवा अगर अपने गांव के 10 परिवार की मदद करने को संकल्प लेता है तो ये राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत सारी चीज युवा बहुत कुछ कर सकता है। युवा के अंदर युवा नेतृत्व का विकास करना बहुत जरूरी है। जब युवा का नेतृत्व जब हो जाएगा तो अपने आप अपन आजादी की बात कर सकते हैं, अपने आप स्वराज की बात कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, तो जैसा कि आप युवाओं को लेकर कह रहे हैं कि युवा में ऊर्जा होती है, युवा नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन अभी के समय में हम देख रहे हैं और जैसा कि आपने भी बताया कि फोन का उपयोग हम सही तरीके से करें, लेकिन अभी के समय में सर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया देखो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हम देखें, वहां पर आजकल ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो इसको लेकर आप श्रोता साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें धैर्य संयम बनाकर रखना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा गुण है।
2: सबसे बड़ा वही गुण है। और वास्तविक क्या है कि भी फोन के अंदर जब कोई चीज देख रील देख लेते हैं समय कहाँ व्यतीत होता है पता भी नहीं चलता।
1: बिल्कुल,
2: तो उसका सदुपयोग, समय का सदुपयोग करके करना चाहिए। ये जो तकनीकी अपन ने हाथ में आई है वो तकनीकी का जितना दुरुपयोग किया इतना आपका समय बर्बाद होगा और साथ में समय इंतजार नहीं करता है।
1: बिल्कुल,
2: समय सबका एक साथ चलता है। तो जितना ये तकनीकी का सही उपयोग करेंगे, जितने अपनी तकनीकी गांव में ज्यादा उपयोग करके उनको लाभान्वित करेंगे, इतना ही गांव का विकास और उसका खुद का विकास अच्छा होगा।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इसको लेकर हमारे युवा साथी अपने स्तर पर क्या छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं?
2: युवा साथी जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे अच्छे प्रयास कर सकते हैं कि भी बहुत सारी इसके अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, खेती को लेके भंडार भरा हुआ है। तो किसान को जाके बताएंगे कि भी आप ये तकनीकी अजमाइए तो इससे आपकी खेती में सुधार हो सकता है, आप ये बीमारी आई है कोई बीमारी को लेके वो अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो ये तकनीकी से शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, नवाचार लाके नवाचार कर सकते हैं, नया उद्यम गांव के अंदर स्थापित कर सकते हैं। तो बहुत सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है और इसके साथ किसान की आजादी भी ला सकते हैं। अब किसानों के लिए आजादी एक अलग चीज है, तो वो भी अपना युवा वहां ला सकता है कि भी आज की जो स्वतंत्रता दिन है उसके अवसर पर किसान की आजादी के लिए भी सोचना चाहिए युवाओं को। कैसे सोच सकता है कि किसान केवल उत्पादन वाला व्यक्ति नहीं रहे, है ना, वह देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। तो लेकिन किसान की ऐसी खेती की जरूरत है जो मिट्टी को भी बचाए।
1: बिल्कुल,
2: पानी को भी बचाए और परिवार की आय भी अर्जित करें। और हमें अपनी स्थानीय फसल हो, जैसे अपन जो स्थानीय फसल है, अपन मोटा अनाज की बात करते हैं, है ना, मिलेट्स की बात करते हैं, पारंपरिक बीजों एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की बात करते हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो ये सब चीज का ज्ञान भी युवा अपने तकनीकी के माध्यम से किसानों को दे सकता है और किसानों को भी इसकी जानकारी देके रक्षा करवा के एक अच्छा कदम उठा सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आप हमें बहुत ही अच्छी बातों से अवगत करवा रहे हैं, तो अंत में आज के दिन को लेकर आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम किस तरीके से देशभक्ति की भावनाओं को अपने अंदर रखें और देश के विकास में और देश में अभी के समय में जो भी गलत चीजें आ रही है उनसे दूर रहें।
2: बिल्कुल, आज के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आज के जो युवा पीढ़ी है जो नशे के ऊपर ज्यादा दौड़ रही है, ये मोबाइल के दुरुपयोग के लिए ज्यादा दौड़ रही है,
1: बिल्कुल,
2: और नशा हमेशा नुकसान ज्यादा करता है, शरीर का तो करता ही है, घर की बर्बादी भी करता है,
1: बिल्कुल।
2: तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए युवा यदि नशा छोड़ के सही कार्य के अंदर अपना हाथ बटाएगा और अपना जो दिमाग है वो कार्य करेगा तो हो सकता है उसका खुद का विकास होगा, युवा पीढ़ी आगे आएगी और गांव का भी विकास होगा। गांव के अंदर सभी साथियों को कैसे अपन ग्राम सभा के अंदर ले जाके अपने कार्य को कैसे मजबूत करें, गांव के कार्य को कैसे मजबूत करें, युवा ये भी इसके अंदर आगे हाथ में ले सकता है।
1: जी जी।
2: और इसी हिसाब से युवा जितना आगे आएगा इतना गांव का विकास होगा और खुद का विकास होगा।
1: बिल्कुल। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में पटेल सर जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे युवा साथियों के लिए रहा कि किस तरीके से युवा जो हैं वो हमारे देश का भविष्य है और उन्हें नशे से दूर रहने की ज़रूरत है। जो सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों का वो प्रयोग कर रहे हैं उनका उन्हें सीमित और सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो सर जैसा कि बातें आज कार्यक्रम में हम आपसे ढेर सारी कर ही चुके हैं श्रोता साथियों से, इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहन जी सर। तो सोहन जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम वागड़ रेडियो परिवार में। तो सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे आज के दिन को लेकर हमारे श्रोता साथियों के लिए क्या संदेश है वो जानना चाहूंगी।
3: सभी को 80वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और सभी इस दिन को अच्छे से मनावे, अच्छे से नए नए जो है रिजोल्यूशन ले और देश के हित में जो है कुछ कार्य का निर्णय करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि उन्हें नए नए चीज़ों को सीखते रहना है क्योंकि अभी का जो समय है वो नई चीज़ों को सीखने का समय है, लेकिन सर हम देखते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हमें हमारी परंपरागत चीज़ों को और बदलाव में संतुलन बनाकर रखने की ज़रूरत है?
3: देखिए कि जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय परिस्थितियां अलग रही होगी, अलग अलग तरह के निर्णय हुए होंगे, अलग तरह की सोच रही होगी, उस समय के अनुसार लोगों ने अपना अपना काम किया होगा, सभी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, शायद वो उस समय वो जरूरी था।
1: जी जी।
3: आज के समय में हम देखते हैं तो हमें आज के समय के अनुसार जो है हमारे निर्णय है वो लेने चाहिए। साथ ही जो आपने बात करी मतलब स्वीकार करने वाली, तो बदलाव को स्वीकार नहीं करना। अब बदलाव तो सतत प्रक्रिया है, निरंतर होती रहती है,
1: बिल्कुल,
3: और वो होती रहेगी, होती आ रही है, तो धीरे उसी बदलाव को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि प्रकृति हमको स्वीकार नहीं करेगी,
1: बिल्कुल,
3: और हमको बदलाव के अनुरूप अपने आप को भी ढालना पड़ेगा। अधिकारों के साथ साथ जो है हमारे संविधान ने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात करी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता।
1: जी जी।
3: या कर्तव्यों का पालन कोई नहीं करता। तो जितना हम अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं क्या उतना ही हम हमारे जो कर्तव्य है उनको ध्यान देते हैं?
1: बिल्कुल।
3: ठीक है, मेरा बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है
1: जी, जी।
3: लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, उसको बोलना और उस किसके बारे में बोलना, तो वो मेरा कर्तव्य का पार्ट है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं बोल जाऊं कि लोगों को जो है कहीं दर्द पहुंचाए या किसी को हानि पहुंचाए या कोई दुखी महसूस करे मेरी बात को सुन के, या मैं क्या बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा सोच के बोलेंगे, या जो भी हमारे आसपास जो भी परिवर्तन है उनके बारे में बोलेंगे।
1: बिल्कुल।
3: अगर हम जैसे कि परिवर्तन को स्वीकार करने की बात है तो हम देखेंगे पहले या उसके बारे में सोचेंगे समझेंगे ये परिवर्तन क्यों हुआ।
1: बिल्कुल।
3: तो हमको समझ में आएगा कि ये परिवर्तन करना जरूरी था इसलिए ये परिवर्तन हुआ। और बिना सोचे समझे अगर हम उसमें ऐसी बातें बोल दें तो कितने लोगों ने उस परिवर्तन के अंदर अपना सहयोग दिया, उस सहयोग को हम बिल्कुल ही नकारा साबित कर देंगे।
1: बिल्कुल।
3: तो हमको जो है जो भी निर्णय है या हमारी बातें हैं बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए, या हमारे आसपास में देखेंगे हम तो उन चीजों को भी हमको ध्यान में रखने की जरूरत है हमारी प्रकृति के बारे में। जब गांधी जी ने देश आजादी के समय ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी तो ग्राम स्वराज की परिकल्पना का उनका उद्देश्य वही था कि देश आजाद हुआ है और देश आजाद हुआ तो हमारा गांव है, गांव सबसे छोटी इकाई है।
1: बिल्कुल।
3: है ना, तो वो अगर सशक्त होगा वो आत्मनिर्भर होगा और वो अपने फैसले खुद करेगा, वो अपने निर्णय खुद करेगा, वो अपनी योजनाएं खुद बनाएगा तो एक सशक्त राष्ट्र की निर्माण होगी। अगर सबसे छोटी कड़ी इतनी मजबूत है तो देश अपना भी स्वतः ही मजबूत
1: हो जाएगा। बिल्कुल सर।
3: तो और इसी को ही ग्राम स्वराज है, चाहे आत्मनिर्भरता है, विकास है, ये सारी, और दूसरों पे निर्भरता कम है, हम किसी भी मायने में हम ले लें तो आज की जो वाग्दरा संस्था है ये भी गांधी जी के विचारों पे चल रही है। और हम देखेंगे तो हम कहते हैं कि स्वराज के लिए हम बात करते हैं, सच्ची खेती जो है कि मतलब किसान है वो अपनी खेती पे किसी के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं है।
1: बिल्कुल।
3: उसका जितना भी आदान खेती का है वो स्वयं से निकले और जो वो खावे वो पकावे और उसकी खेती की जरूरतें वहां पूरी हो जाए, उसके घर की जरूरतें पूरी हो जाए, गांव की जरूरतें पूरी हो जाए, राष्ट्र की जरूरतें पूरी हो जाए तो उसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
1: बिल्कुल।
3: हाँ, तो इसी तरह से हम बचपन बच्चा है अच्छा पढ़े लिखे सामाजिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से उसको देखा जाए, उसको अपनी बात रखने का मौका मिले, या मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो, वही हम सारी चीजें जो है देखते हैं। तो हम उसके पीछे यही है कि बच्चा है कल का नागरिक बनेगा, अगर वो इसी सोच के साथ या आत्मनिर्भरता के साथ या उसके पास जो जरूरतें हैं उन सब चीजों का उसके पास सॉल्यूशन है तो वो कल उठ के किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, या जो है या कल उठ के ऐसा नेता बन के निकलेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगा। हो सकता है कि जो है लोग उसके साथ जुड़े, हो सकता है कि जो है आज के जमाने का वो बड़ा जो है लीडर निकले। तो उसी तरह से जो ग्राम स्वराज है उसी को ही आगे ले जाने का प्रयास है वाग्दरा का। और ठीक है, तरीके अलग है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था उस समय परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है, हमको आज की परिस्थिति के बारे में सोच के उसकी परिकल्पना करके और हम कैसे जो है ग्राम स्वराज को आज के परिदृश्य में कैसे उसको साकार कर सकते हैं, हमको उसके बारे में
1: सोचने की जरूरत है।
3: और सभी साथियों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारे आसपास हमारे घर में कैसे हम स्वराज स्थापित कर सकते हैं उसके ऊपर हम प्रयास कर सकते हैं, घर से हमारा स्वराज या स्वयं से अपना स्वराज से हम चालू करते हैं और धीरे धीरे हमारे घर पे आते हैं, घर से गांव पे आते हैं, गांव से फिर हमारे जो है ब्लॉक पे आते हैं, और इस तरह के प्रयास ही धीरे धीरे धीरे एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है और इसी से ही देश का विकास हो सकता है।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों को बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
3: धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में सोहन जी सर जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से बहुत ही प्यारा सा संदेश हमने जाना। बातें इसी तरह आगे और भी यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
4: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बहुत अच्छी बातें हमारी चल रही है आजादी के पर्व को लेकर, और गीत से पहले हम बहुत प्यारे संदेशों के माध्यम से अंजलि जी ये जान पाए थे कि आजादी जो है वो केवल उत्सव नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, आपसे हम कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसे मजबूत बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देशभक्ति जो है वो केवल झंडा फहराने या नारे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए साथियों।
1: जी जी,
0: सच्ची देशभक्ति अंजलि जी अपने काम को ईमानदारी से करना है, समाज की भलाई के लिए सोचना और देश के विकास में योगदान देना है। हम देखते हैं कि हर नागरिक जब अपने जिम्मेदारी को समझने लगेगा, तब हम कह सकते हैं कि भारत और अधिक शक्तिशाली होगा, समृद्ध बनेगा और विकसित राष्ट्र के रूप में कहलाएगा।
1: बिल्कुल कशिश, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया है।
0: जी जी।
1: महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीरों ने देश की आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: जी जी,
1: अनेक जो देशभक्त हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। श्रोता साथियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, विद्यालयों में भाषण, निबंध, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, इन सब के साथ ही हमारी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि इस दिवस को हम स्वतंत्रता के तौर पर मना रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें आजादी मिल गई है, लेकिन हमें फिर से गुलाम की जो बेड़ियां हैं उसमें नहीं बनना है।
0: जी हाँ अंजलि जी,
1: अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है, हर कोई अलग थलग इधर उधर हो रहा है, तो हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा जो देश है वो गुलाम भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी कमी पकड़ ली थी, उन्होंने कूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी।
0: जी जी।
1: और जब अन्य जो लोग हैं वो कूट डालते हैं और राज करते हैं, तो हम फिर से गुलाम हो जाते हैं।
0: जी,
1: तो
0: हाँ,
1: इस चीज को अभी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति न आए जो हमारे बीच में कूट डाले और फिर से हम पर राज करें। इन सारी चीजों को परे रखते हुए हमें हमारे जीवन में जो स्वतंत्रता मिली है, जो आजादी मिली है, उसे नहीं भूलना है। और हमारे जो देशभक्त हैं, जो सीमा पर रहकर 24 घंटे हमारी देखभाल करते हैं, तो उनके लिए हमें सोचने की जरूरत है कि हम देश में रहकर किस तरीके से हमारे देश को स्वतंत्र, आजाद और ईमानदारी तरीके से कर्तव्य को निभाते हुए आजाद कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो कशिश, बातें ढेर सारी हो गई हैं, समय हो चला है विदा लेने का, विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे।
0: बिल्कुल,
1: ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों के माध्यम से हमारे इस पते पर।
0: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है दोस्तों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
1: श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
1: नमस्कार। साथ ही श्रोता साथियों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: सर पे

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सअप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है वीर जरा, गीत के बोल हैं ऐसा देश है मेरा। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है नितिन पाटिल, नंदिनी पाटिल, सतीश पाटिल, बाबूलाल जी पाटिल। कोका बलाई से जुड़ना चाह रहे हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजित कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल, नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि जंगेल, ओशिका जी जंगेल, आदित्य जी जंगेल। उत्तर प्रदेश भागपत से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही ऐसा देश है मेरा। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे ऐसा देश है मेरा। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है हकीकत, गीत के बोल हैं ए मेरे वतन के लोगों। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जॉन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पॉल डिकिस्टो, विलिची डिकिस्टो। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जौनपुर से। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवदी इरशाद, अजरत अबूसम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजूडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से जुड़ रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानी, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हकीकत, गीत के बोल हैं ए मेरे वतन के लोगों। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है बॉर्डर, गीत के बोल ही संदेश ही आते हैं। इस गीत की फरमाइश करता है राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुबह शोगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमिन और शालिनी डोमिन, लाहौरा से जुड़ रही हैं डोली प्रभा और प्रभा जी। इस गीत के अनुरोध करता है रायगढ़ बिहार से उमा राज, दीपक उमा, जगदीश उमा, अरविंद उमा, कमल जी उमा। खड़वा से जुड़ रही हैं दुर्गा कुमारी, राकेश ताई जी। डुमराव से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है बॉर्डर, गीत के बोल ही संदेश ही आते हैं। इस गीत को आवाज दी है सोनू जी ने। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आयुश्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है सिकंदर ए आजम, गीत के बोल हैं जा डाल डाल पर सोने की चिड़िया। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बक्सर शहर से फातिमा नाज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी, सोनम अंसारी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब जी। इस गीत के अनुरोध करता है वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा सुरुषी। धनुरी तेलीवाला से जुड़ रही निसार सलमानी, नसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सिकंदर ए आजम, गीत के बोल ही जा डाल डाल पर सोने की चिड़िया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और गीत के बोल हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुरेश गगनीजा, पीनम गगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं अंबाला हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका नमत, गुरशब्द गुरकिरत सिंह राहुल और विजेंद्र जी जान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश जी खोरवाल। इस गीत के अनुरोध करता है पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, उस्मानाज अंसारी, शबनम बानो जी। देचेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनेजा, बिमला जी अनेजा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सहारनपुर से। फिल्म का नाम है दिल जले, गीत के बोल हैं मेरा देश मेरा मुल्क। इस गीत की फरमाइश करता है राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपन नवजी नामदेव और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजीव गीता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। पटेल नगर मालोड़ से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, गुड्डू झांझोरिया जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है दिल जले, गीत के बोल हैं मेरा देश मेरा मुल्क। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है केसरी, गीत के बोल है तेरी मिट्टी में मिल जावा। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशिनी निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, बीबी कुतलेश जी और बिरजू परदेसी जी। भीड़ शहर से और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जयश्री मेलेत्री, कविता, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुतले, मंजूश्री परदेसी और मीरा भूसी जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं सनावत से समेद मशरूम, साइना हसन, अगजानाजिया, आफिया और इब्राहिम जी। सनावत से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इशाक और बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधान खुराना। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रही हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणानी, अर्चनाताई गुणानी, प्रणय प्रसिद्धि जी, हीरामन जी शेंडी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है केसरी और गीत के बोल हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। फिल्म का नाम है उपकार, गीत के बोल है मेरे देश की धरती सोना उगले। इस गीत की फरमाइश करता है अब्दुल लोही वाला शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं संगमुंगी से बाबा साहेब कणककर, साकरबाई कणककर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणककर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नसमुद्दीन और केसरुद्दीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है मराठवाड़ा से समयद मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया और इब्राहिम जी और रामभाव तनवी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीदीश राज, अजरा तबुस्सम जी। बनारस से जुड़ रहे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है उपकार और गीत के बोल ही मेरे देश की धरती सोना उगले। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, स्वीकार कीजिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रमों का सिलसिला हमारा रोजाना आपसे बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और जैसा कि आज भी ये सिलसिला दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से सुबह 11 बजे से बना हुआ था, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और इसे अब आप मेरे साथ सुनने वाले हैं। तो श्रोता साथियों, मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से। और जैसा कि आज हम आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो साथियों कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगी कि किसी ने सच ही कहा है कि जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं उसकी खुशबू से बढ़कर दुनिया में कोई खुशबू नहीं होती। तिरंगे की शान, देश की आन और भारत की मिट्टी से जुड़ा हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आज श्रोता साथियों, इस आजादी के पावन पर्व पर आइए हम सब मिलकर उन वीरों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष और बलिदान की बदौलत हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आजादी के रंग में रंगा एक खास देशभक्ति कार्यक्रम। जैसा कि सुबह 11 बजे से दोस्तों ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से चल रही हैं, इसी बीच हमारी अगली फरमाइश भी दोस्तों आई है। आपको बताना चाहूंगी रायबरेली से, फिल्म का नाम है परदेश, गीत के बोल है आई लव माय इंडिया। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हरिमोहन मीणा, खुशीराम जैन, मनोज कुमार जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं माधोपुर से, मेघराज मीणा, अक्षय सिंह, हरिश्चंद्र प्रजापति, रोशन कुमार, हीरालाल प्रजापति जी। घाटोल से हैं श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, सत्यम कुमार, भावना जैन, आशा देवी, अभिषेक भट्ट, सत्येंद्र कुमार जी। बिहार से जुड़ रहे हैं शबीर परवाना, लखनलाल, रामस्वरूप जी, अभिषेक वर्मा, हेमंत टेलर, जीत चौहान जी, अजित कुमार मलखान जी। पाडीकला से जुड़ रहे हैं मनोज कुमार, अजय प्रजापत जी, राकेश पटेल, राकेश कुमार, मेघराज मीणा, घमंडीलाल मीणा जी और अमर सिंह और श्यामलाल जी। तो आइए श्रोता साथियों, इन श्रोता साथियों के फरमाइश के गीत के साथ मनोरंजन करते हैं। गीत के बोल हैं आई लव माई इंडिया।

0: मिले उड़ने का मुझे और मेरे बालों को भी विद हेयर एंड केयर आमंड हेयर ऑयल, जो हेयर फॉल घटाए, बालों को स्मूथ और सिल्की बनाए ताकि आपसे नजरें ना हट पाए। हेयर एंड केयर आमंड हेयर ऑयल।
1: शिलाजीत के बारे में कौन नहीं जानता, शक्ति का भंडार है शिलाजीत। शिलाजीत खाने वाला मर्द कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। जोड़ दर्द, कमर दर्द, शुगर, डायबिटीज, किसी भी तरह की कमजोरी हो, शिलाजीत से दूर भाग जाती है। इसको खाने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं।
2: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है श्रोता साथियों, और कार्यक्रम के माध्यम से आज़ादी का पावन पर्व हम मना रहे हैं, जैसा कि आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में श्रोता साथियों, फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है ए वतन तेरे लिए, जो कि श्रोता साथियों कर्मा फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत है। आपको बताना चाहूंगी ये फरमाइश हमारे बीच आई है प्रतापगढ़ से। श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं अनिल साइमा जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अर्शिका जैन, और भी दोस्त जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में, जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से एड नाशिद शेख, नाजा नाशिद, शादिद शाहिद, गोविंदपुरा बदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी, बाटापारा छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ए वतन तेरे लिए। तब तक आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों। ये फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है विजय पथ फिल्म से। गीत के बोल हैं, राह में उनसे मुलाकात हो गई। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं मेरठ से अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वी एम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बताना चाहूँगी जोधपुर राजस्थान से है रमेश श्रीनाथ चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। साथ ही जुड़ना चाह रहे कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। श्रीरामपुर से एड नाशिर शेख, नाजिन नाशिर, शाजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाल मुजावर जी। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हिमकेश्वर साहू, कर्ण राहुल साहू, चंपा साहू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, राह में उनसे मुलाकात हो गई।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कुशवाग से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल है अब के बरस तुझे धरती की रानी। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे कैलाश नीनामा, सूरज, हरिमोहन, राधेलाल जी, मेघराज मीणा, रतनलाल, मदनलाल जी, हरप्रसाद प्रजापति, भगवंत दास, रोशन कुमार, हरिप्रसाद, हेमंत टेलर, अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुमार जी, शाबिर परवाना जी, शाहिद अली, जाहिद अली जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, धनपुरा से सुरेश नए, विक्रम सिंह, लक्ष्मण कुमार चौहान, चंद्रपाल कुशवाहा जी, राम प्रसाद गोस्वामी जी, महावीर देवीलाल, राजा राम कुमार, अजय कुमार, श्यामलाल जी, तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल है अब के बरस तुझे धरती की रानी।

0: सबके बरस।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, अब के बरस तुझे इस धरती की रानी कर देंगे। इसी गीत के बाद श्रोता साथियों फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों बॉर्डर फिल्म का संदेश आते हैं। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में घाटोल से योगेंद्र प्रजापति, हरदेव कुमार, जसवंत कुमार जी, कैलाश नीनामा, मुकेश पांडे, सतीश पांडे, कल्याण सिंह, पूनम गौतम, शैलेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, लालचंद प्रजापति, मेघराज मीणा जी। पाड़ी कला से जुड़ना चाह रहे हैं हेमंत टेलर, मेघराज मीणा, गमडी लाल जी, गजेंद्र कुमार, जगदीश प्रजापति, रामेश्वर दाम जी और मनोज कुमार, हरिमोहन, सतीराम जोश जी। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं बड़ोदिया से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका गुरकिरत, गुजेंद्र सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी दिलीप कुमार जी, विजय जैन, अर्जुन निनामा जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं चारवी दर्जी, रमेश चौहान, हरिप्रसाद, प्रेम नारायण, मेघराज मीणा जी, लखनलाल मीणा जी, रविंद्र कुमार, संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, मनोहर दास जी, राकेश प्रजापति जी, ये सूरपुर से जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन कर लेते हैं हमारे दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं संदेशे आते हैं, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा था साथियों। इसी बीच बढ़ते हैं फिर से अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं बताना चाहूंगी, पाडी कला से। फिल्म का नाम है दोस्तों, बताना चाहूंगी, माँ तुझे सलाम। गीत के बोल है वंदे मातरम। इस प्यारे से गीत को आवाज दी है AR रहमान जी ने। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं शबीर परवाना, हेमंत टेलर चारवी जी, नरेश चौहान, हरिप्रसाद, प्रेम नारायण, मधुराज और मेघराज मीणा जी, लखनलाल मीणा जी, रविंद्र कुमार, संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, मनोहर दास जी, राकेश प्रजापति, आशीष कुमार, अर्श मिश्रा जी और भी दोस्त गांटोल से हैं, श्यामलाल, रामस्वरूप, संदीप जैन, श्यामलाल, अजय कुमार, मेघराज मीणा जी, इम्तिहास कलासिया जी, चंद्रपाल कुशवाहा, लक्ष्मण कुमार चौहान, विक्रम सिंह, सुरेश नायक जी और भी साथी जुड़ रहे, श्यामलाल, अमर सिंह, मेघराज मीणा, राकेश टेलर जी, राकेश पटेल जी, अभय पटेल जी, मनोज कुमार, राजेश जी, मलखान, अजित कुमार, जोश चौहान, हेमंत टेलर, अभिषेक वर्मा, रामस्वरूप कुमार, लखनलाल, साबिर परवाना जी, हरिमोहन मीणा, खुशीराम जैन, मनोज कुमार, हरिशन प्रजापति, ये घाटोल से ही जुड़ रहे हैं। इसी बीच रायबरेली से है मेघराज हीरालाल जी, सत्यम कुमार जी, भावना जैन जी, माधोपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आशय देवी, अभिषेक भट्ट जी, सत्येंद्र कुमार जी और भी हमारे दोस्त कंजुडवारा से हैं, शमशुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच दोस्त हैं जो और भी इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी, पाड़ी कला हरदोई से हैं हेमंत टेलर, रजनी सिंह चौहान, मोहनलाल दर्जी, शारदा देवी, नरेश चौहान, देवेंद्र प्रजापति, पीताराम कटारा, घसीटाराम जी, रे किरण शर्मा, हरनारायण जी, सुरेश कुमार, सीताराम, मेघराज मीणा, घसीटालाल जी, कल्याण सिंह, संदीप कुमार, मेघराज मीणा जी, मुन्नालाल जी, रमेश प्रसाद, नरेश चौहान, रवि प्रसाद जी, कौशल्या शर्मा जी, रामस्वरूप निनामा जी, सूरपुर से जुड़ रहे हैं। इसी बीच श्रोता साथी कानपुर से वलीउल्लाह अंसारी, अजमान अंसारी, शाबिर परवाना जी, जाहिद अली, शाहिद अली जी, पूनम गौतम, हेमंत टेलर जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं वंदे मातरम।

श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों, हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। इसी के साथ श्रोता साथियों, आप सभी को फिर से वागड़ रेडियो परिवार की ओर से आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारी आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़। इसे लेकर आएंगे जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेती बाड़ी। इसे लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। श्रोता साथियों, यह तो थी आज के संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, एक बार फिर से राष्ट्र की कमान हिंदुस्तानी अपने हाथ धरे। आओ स्वतंत्रता दिवस का मान करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर मंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोनो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रहो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रहो ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
5: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना ना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, स्वतंत्रता दिवस केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदारियों को याद करने का अवसर है जो एक नागरिक के रूप में हमारे देश के प्रति हमारी है। आज़ादी का अर्थ तभी पूरा होगा साथियों, जब हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें और समाज में जागरूकता के साथ साथ भाईचारे का संदेश भी फैलाएं।
1: जी हाँ साथियों, आप सभी को इन चंद पंक्तियों के साथ वागर रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार
1: और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आजादी के संघर्ष से युवाओं को क्या सीख मिलती है।
0: बिल्कुल
1: कशिश, आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत संघर्षों, त्यागों, साहस और संकल्प को याद करने का अवसर है जिनकी बदौलत हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, 15 अगस्त यानी कि हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस, ये वो दिन है जब हम अपने तिरंगे को गर्व से लहराते हैं, राष्ट्रगान के साथ सम्मान पूर्वक खड़े होते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या स्वतंत्रता दिवस केवल झंडारोहण, मिठाई और देशभक्ति गीतों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता दिवस हमें एक सवाल भी देता है कशिश, और वो सवाल है कि आखिर हमारे स्वतंत्रता संग्राम से आज के युवा क्या सीख सकते हैं।
0: जी
1: तो
0: हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम में ये देशभक्ति गीत को।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और बात आज जैसा कि हम कर रहे हैं हमारे आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर। तो जागृति जी, जैसा कि गीत से पहले आपने हमारे युवा साथियों को बताया था कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक सवाल लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: और वो सवाल ये है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम से आज के हमारे जो युवा साथी हैं वो क्या सीख ले रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना होगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। आज हम शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने, अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी को सामान्य मान लेते हैं।
1: बिल्कुल कशिश।
0: लेकिन जागृति जी, ये अधिकार हमेशा हमारे पास नहीं थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने हमें ये सिखाया है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है।
1: जी हाँ,
0: हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था युवा साथियों, जहाँ हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, जहाँ भेदभाव कम हो, जहाँ शिक्षा और अवसरों के रास्ते खुले हो और जहाँ देश अपने आप स्वयं फैसले ले सके।
1: बिल्कुल कशिश। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम आजाद हैं, बल्कि यह भी है कि हम इस आजादी का उपयोग किस तरह कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, क्या हम अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझते हैं? क्या हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं? यही स्वतंत्रता दिवस की असली सीख है।
0: बिल्कुल।
1: भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमें सबसे बड़ी सीख देता है कशिश, मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना।
0: जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजादी की राह आसान नहीं थी। लंबे संघर्ष, कठिन परिस्थितियाँ और अनेक चुनौतियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सामने थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर भी हमारे सेनानियों ने अपने उद्देश्यों को नहीं छोड़ा साथियों। ऐसे में आज के युवाओं के सामने भी अलग अलग चुनौतियां हैं जागृति जी। किसी के सामने पढ़ाई का दबाव है तो किसी के सामने रोजगार की चिंता है, कोई अपने करियर को लेकर असमंजस में है तो कोई अपने सपनों को लेकर परिवार और समाज की अपेक्षाओं के बीच रास्ता खोज रहा है। ऐसे समय में दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम हमें याद दिलाता है कि बड़ी मंजिलों के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी होता है।
1: जी हाँ,
0: हर सफलता तुरंत नहीं मिलती, कभी रास्ता कठिन होगा, कभी असफलता मिलेगी और कभी लोग हतोत्साहित करेंगे दोस्तों।
1: जी हाँ,
0: लेकिन यदि लक्ष्य सही है और प्रयास ईमानदार है तो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखना हमें चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश। और दूसरी सीख है एकता में शक्ति। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि एकता में ही शक्ति होती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम अलग अलग हो गए तो हमारी जो शक्ति है वो बिखर जाएगी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण ताकत थी एकता। अलग अलग क्षेत्रों में, भाषाओं में, समुदायों और पृष्ठभूमियों से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता के बड़े उद्देश्य के लिए अपनी भूमिका निभाई थी कशिश।
0: बिल्कुल।
1: ये आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हमारे बीच भी दूरी पैदा हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: हमें समझना होगा श्रोता साथियों कि हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। युवा जब मिलकर काम करते हैं कशिश, तो छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन में बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल। हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि गांव की स्वच्छता हो, शिक्षा का प्रसार हो, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर रक्तदान के प्रति जागरूकता ही क्यों न हो, या किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो श्रोता साथियों, ये सभी सामूहिक प्रयास हमेशा अधिक प्रभावी होते हैं और ये हमें एक अच्छी सीख भी देते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जागृति जी आजादी के संघर्ष को लेकर हमारे युवा साथियों से बात कर रहे हैं, तो ये बातें हम आगे भी जरूर करेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आप बने रहें साथियों कार्यक्रम युवाओं।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले हम बात कर रहे थे, आजादी के संघर्षों से युवाओं को क्या सीख मिल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो जैसा कि हमने जाना था कशिश, की स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति नहीं है, साहस के साथ अपने लक्ष्य पर हम किस तरह से टिके रहे ये भी बात की थी, एकता में शक्ति को लेकर बात की थी, यही जानते हैं अहिंसा, धैर्य और शांतिपूर्ण बदलाव को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा महात्मा गांधी जी के विचारों के बिना पूरी नहीं हो सकती है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया। कशिश,
1: बिल्कुल,
0: उनके विचार हमें ये बताते हैं कि परिवर्तन के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही विचार भी बहुत जरूरी है। आज के युवा यदि किसी समस्या से असहमत है तो वे अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन साथ ही दूसरे के विचारों का सम्मान भी कर सकते हैं। श्रोताओं, सोशल मीडिया पर किसी विचार से असहमति होना स्वाभाविक है, लेकिन असहमति का मतलब अपमान नहीं होना चाहिए। विचारों की लड़ाई विचारों से हो, नफरत से नहीं, और यही लोकतांत्रिक समाज की खूबसूरती है। कशिश
1: जी, हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों में त्याग और जिम्मेदारी की सीख भी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम हमें ये सिखाता है कि बड़े उद्देश्यों के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सुविधाओं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के बारे में भी सोचना पड़ता है। आज के युवाओं के लिए त्याग का अर्थ हमेशा कोई बड़ा बलिदान देना नहीं है, कभी कभी त्याग का अर्थ होता है साथियों अपने समय का थोड़ा हिस्सा समाज के लिए देना, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करना, पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना, गलत सूचना को आगे न फैलाना और अपने काम को ईमानदारी से करना। हम देखते हैं कि देशभक्ति केवल भावनाओं से नहीं हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, आजादी के संघर्ष से युवाओं को यह भी सीख मिलती है कि जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज हमारे पास शिक्षा के लिए पहले से कहीं अधिक अवसर भी है।
1: बिल्कुल।
0: किताबों के साथ इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन संसाधनों ने ज्ञान तक पहुंच को आसान बना दिया है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है।
1: जी बिल्कुल।
0: सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर बात सच नहीं होती श्रोताओं, इसलिए युवा किसी भी जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले उसकी सत्यता को जांचे। एक जागरूक युवा केवल अपने अधिकारों को नहीं जानता बल्कि संविधान, लोकतंत्र, कानून और अपने

0: कर्तव्य को भी समझता है।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षित युवा अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए अवसर पैदा करता है। कशिश
1: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर दोस्तों को बताएं तो आजादी के संघर्ष में एक सपना था स्वतंत्र भारत का सपना।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आज हमारे युवाओं के पास भी अपने अपने सपने हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई शिक्षक, कोई किसान के लिए नई तकनीक विकसित करना चाहता है, तो कोई ऐसे भी हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है और कोई जागृति जी समाज में सेवा के माध्यम से बदलाव लाना चाहता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों सपना केवल देखने से पूरा नहीं होता, उसके लिए योजना, मेहनत, अनुशासन और लगातार सीखने की जरूरत भी होती है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर युवा खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं और वो ये है कि मेरे सपने केवल मेरे लिए हैं या उनसे मेरे समाज और देश को भी लाभ हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हमारे व्यक्तिगत सपनों में साथियों सामाजिक उद्देश्य जुड़ जाए तो वही सपना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बन सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ आजादी का एक महत्वपूर्ण अर्थ है आत्मनिर्भरता। श्रोताओं, अगर हमारे युवा अपने कौशल को विकसित करते हुए नए हुनर सीखते हैं कशिश, और रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की संभावनाओं को भी समझते हैं, तो वे अपने लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज डिजिटल तकनीक, कृषि, हस्तशिल्प, उद्यमिता, मीडिया, शिक्षा, पर्यटन और अनेक क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर मौजूद है। जरूरत है तो अपनी क्षमताओं को पहचानने की।
1: बिल्कुल
0: साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि डिग्री के साथ कौशल, ज्ञान के साथ अनुभव और सपनों के साथ मेहनत, यही आधुनिक आत्मनिर्भरता की पहचान है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथी दोस्तों समाज के हर व्यक्ति का सम्मान होना भी जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक आनंद तभी होता है जब समाज का हर व्यक्ति सम्मान और अवसर के साथ जीवन जी सके। यदि किसी बुजुर्ग को सहायता चाहिए साथियों, तो उनके साथ खड़ा होना भी समाज सेवा है। यदि किसी गाँव में स्वच्छता की समस्या है तो हमारे युवा साथी मिलकर अभियान भी चला सकते हैं, और ये भी एक देशभक्ति है जागृति जी।
0: बिल्कुल,
1: कहा जा सकता है कि देश केवल सीमाओं से नहीं बनता, देश उनके लोगों से बनता है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वतंत्र भारत हमें संविधान देता है, संविधान हमें अधिकार देता है और साथ ही जिम्मेदारियों की याद भी दिलाता है। आज के युवा अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्य दोनों को समझना होगा। अपनी बात रखना जरूरी है श्रोताओं, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: अपनी स्वतंत्रता को उपयोग करते हुए ये ध्यान रखना होगा हमें कि हमारे कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को नुकसान न पहुंचे। अच्छा नागरिक वही है जो अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी समझता हो।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों को आज की देशभक्ति के बारे में सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि दोस्तों देशभक्ति का मतलब केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लगाना नहीं होता। देशभक्ति तब भी है जब एक विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है। देशभक्ति तब भी है जागृति जी जब एक युवा अपने काम में ईमानदारी रखता है। देशभक्ति श्रोता साथियों तब भी मानी जाएगी जब कोई नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकेगा।
0: बिल्कुल,
1: देशभक्ति वही है जब कोई युवा रक्तदान, शिक्षा, पर्यावरण या समाज सेवा के अभियान में योगदान देगा। जब हम किसी जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होंगे साथियों, तो ये भी एक देशभक्ति का ही उदाहरण है।
0: जी हाँ,
1: याद रखिए कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का काम नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हम भारत के वर्तमान भी है और भविष्य भी है। हमारे हाथ में मोबाइल भी है, लेकिन उसी हाथ में बदलाव की ताकत भी है। हमारे पास तकनीक भी है, लेकिन उसके साथ विवेक भी होना चाहिए। हमारे पास सपने हैं, लेकिन उन सपनों के साथ जिम्मेदारी भी होनी होगी। हमारे पास बोलने की आजादी भी है श्रोता साथियों, तो सच और सम्मान के साथ बोलने की जिम्मेदारी भी है। हमारे पास अवसर है, तो उन अवसरों का उपयोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें करना होगा।
1: जी हाँ,
0: आजादी के संघर्ष ने हमें एक स्वतंत्र देश दिया। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम इस देश को शिक्षित, जागरूक, आत्मनिर्भर, संवेदनशील और मजबूत बनाएं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वतंत्रता दिवस हमें केवल अतीत याद करने के लिए नहीं आता, ये हमें वर्तमान को बेहतर बनाने और भविष्य को मजबूत बनाने की प्रेरणा भी देता है। हम उन सभी ज्ञात अज्ञात लोगों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष और योगदान ने भारत की स्वतंत्रता की राह को मजबूत किया।
1: बिल्कुल,
0: आज तिरंगे को देखते हुए केवल गर्व महसूस न करें श्रोताओं, बल्कि अपने मन में एक छोटा सा संकल्प भी ले कि मैं अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहूंगी, मैं अपने समाज में सकारात्मक योगदान दूंगा या दूंगी, मैं भेदभाव के बजाय समानता को चुनूंगी, मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझूंगा या समझूंगी और अपने ज्ञान, हुनर और मेहनत से भारत के विकास में योगदान दूंगा या दूंगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब जैसा कि कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो साथियों हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और देशभक्ति गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही स्वतंत्रता दिवस को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसपड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: साथियों, मिलजुल कर कदम बढ़ाएं, नए भारत का सपना सजाएं। न भेदभाव, न कोई दूरी, सबकी खुशहाली सबसे जरूरी। ज्ञान की ज्योति जगाएंगे, देश का भविष्य चमकाएंगे। देश हमारा, जिम्मेदारी हमारी, यही है सच्ची देशभक्ति हमारी। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार कीजिएगा साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
0: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। हमारी शुरुआती जो चंद पंक्तियां रही थी उन्हीं से आप समझ गए होंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है, स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार बच्चे कैसे बने।
1: बिल्कुल,
0: बातें कशिश इस विषय पर ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि विषय से रूबरू गीत से पहले करा चुके हैं साथियों की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार बच्चे हम कैसे बन सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे मन में उन वीरों की तस्वीर आ जाती है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, आजादी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। आजादी हमें ये जिम्मेदारी भी देती है कि हम अपने देश, समाज, परिवार और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, आज के बच्चे ही कल के नागरिक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, किसान होंगे या डॉक्टर, वैज्ञानिक, अधिकारी, कलाकार या समाज के मार्गदर्शक भी वे बनेंगे। इसलिए बच्चों को केवल अच्छी पढ़ाई करना ही नहीं साथियों, बल्कि अच्छा

0: बिल्कुल
1: यही आत्मनिर्भरता आगे चलकर देश के विकास में योगदान देने की क्षमता बनाती है। कहना चाहेंगे कृषि श्रोता साथियों से कि एक जिम्मेदार बच्चा केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास भी करता है।
0: बिल्कुल
1: उसे ये जानना चाहिए कि हमारा देश कैसे चलता है, ग्राम पंचायत क्या करती है, स्कूल और अस्पताल क्यों जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी चाहिए और समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार क्यों करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: किताबों के साथ साथ बच्चों को समाचार, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, पुस्तकें और अपने आसपास के अनुभव से भी सिखाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता विकसित करना भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अंजलि जी अगर बात करें कि देशभक्ति केवल नारे लगाने का नाम नहीं है तो साथियों को बताना चाहेंगे कि देशभक्ति का अर्थ केवल राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराना या देशभक्ति के गीत गाना नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: असली देशभक्ति तो साथियों हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देती है। जैसे कि जब कोई बच्चा सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, पानी बर्बाद नहीं करता, पेड़ पौधों की देखभाल करता है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है और साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करता है, तब अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा होता है अंजलि जी। इसी तरह श्रोता साथियों, ईमानदारी से पढ़ना, अपने काम को मेहनत से करना और भविष्य में अपनी क्षमता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना भी देश सेवा का एक रूप है।
1: बिल्कुल कशिश, एक जिम्मेदार बच्चे की पहचान उसके आसपास के वातावरण से भी होती है। बच्चे अपने घर, स्कूल और गांव को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कूड़े को इधर उधर फेंकने की बजाय उचित स्थान पर डालना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, शौचालय का इस्तेमाल करना और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हर बच्चा यह सोच ले कि मेरे गांव की सफाई केवल किसी कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, तो पूरे समुदाय में बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। पानी, जंगल, जमीन, हवा और पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार हैं। आज बच्चों को बचपन से ही कशिश पानी बचाने, पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की आदत डालनी चाहिए।
0: जी हाँ,
1: नल खुला छोड़ना, पानी को बेवजह बहाकर या पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना जिम्मेदार व्यवहार नहीं है। एक बच्चा अपने घर में पानी बचाने की बात कह सकता है, स्कूल में पौधा लगा सकता है और अपने दोस्तों को भी प्रकृति की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम हमारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, तो ये बातें हमारी आगे ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि स्वतंत्र भारत के जिम्मेदार बच्चे कैसे बने, उसको लेकर हमारी आपसे बातचीत चल रही है।
1: जी हाँ।
0: यही अब बात आती है मोबाइल और इंटरनेट का जिम्मेदार उपयोग करना, यानी कि कशिश, आज के बच्चों के जीवन में मोबाइल और इंटरनेट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: बिल्कुल,
0: इंटरनेट ज्ञान का बड़ा माध्यम है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना जरूरी है। बच्चों को मोबाइल का उपयोग पढ़ाई, जानकारी और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कराना चाहिए। अनजान लोगों से निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी के फोटो या वीडियो बिना अनुमति के साझा नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पर मिली हर जानकारी को सच नहीं मानना चाहिए। श्रोता साथियों, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन परेशान किया जा रहा है या उसे कोई संदिग्ध संदेश मिल रहा है, तो उसे यह बात छिपाने के बजाय माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदार नागरिक वही होता है श्रोता साथियों, जो दूसरों के अधिकार और भावनाओं का सम्मान करे। बच्चों को जाति, भाषा, आर्थिक स्थिति, गांव या परिवार के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: हर बच्चे को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और अवसर पाने का अधिकार है। स्कूल में भी कशिश, किसी कमजोर विद्यार्थी का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करनी चाहिए।
1: जी जी।
0: किसी नए बच्चे को अपने साथ खेल में शामिल करना और किसी जरूरतमंद साथी की सहायता करना एक जिम्मेदार बच्चे की पहचान है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने ये बात सही कही। यही अगर हमारे साथियों को हम बताएं, तो श्रोता साथियों, अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ना भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। देखते हैं कि हमारे गाँव और आदिवासी क्षेत्रों की अपनी समृद्ध संस्कृति अंजलि जी, साथ ही लोकगीत, लोक कथाएं, पारंपरिक ज्ञान, खेती की पद्धतियां और जीवन शैली रही है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में जिम्मेदार बच्चे अपनी संस्कृति को जाने, बुजुर्गों से सीखे और अच्छी परंपराओं को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथ ही उन्हें ये समझना भी जरूरी है कि हर परंपरा को केवल इसलिए नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है। जो परंपराएं समाज में प्रेम, सहयोग, प्रकृति संरक्षण और समानता बढ़ाती है, उन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, जैसा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र केवल चुनाव के समय मतदान करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का आधार होता है अंजलि जी, अपनी बात रखना और दूसरों की बात सुनना।
0: जी जी।
1: ऐसे में बच्चों को स्कूल में मिलकर निर्णय लेना, अपनी बात शांतिपूर्वक रखना और दूसरों की राय का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज का बच्चा जब अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझेगा, तभी वह कल एक जागरूक नागरिक बन सकेगा।
0: बिल्कुल यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि कई बार बच्चे सवाल पूछने से डरते हैं, लेकिन सवाल करना, सिखाना भी जिम्मेदारी का हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: अगर बच्चे को किसी बात की जानकारी नहीं है तो वह पूछ सकता है। अगर उसे कोई गलत काम दिखाई देता है तो वह उचित तरीके से उसके बारे में बता सकता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर उसे किसी नियम का उद्देश्य समझ नहीं आता तो वह उसके बारे में जान भी सकता है। लेकिन सवाल करते समय भाषा और व्यवहार में सम्मान बनाए रखना भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: जिम्मेदार बनने का मतलब हर बात चुपचाप सह लेना नहीं है। अगर किसी बच्चे को बाल मजदूरी, हिंसा, भेदभाव, नशे या किसी गलत गतिविधि का सामना करना पड़ रहा है, वह ऐसा कुछ देखे तो उसे किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति या संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को खुद किसी जोखिम भरी स्थिति में जाकर कार्रवाई करने के बजाय सुरक्षित तरीके से मदद मांगना सीखना चाहिए। समय का सही उपयोग बच्चे को जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। इसलिए श्रोता साथियों, पढ़ाई, खेल, आराम, परिवार के साथ समय और रचनात्मक गतिविधियों के लिए संतुलित दिनचर्या बनाना अच्छी आदत है।
1: जी हाँ।
0: हर समय मोबाइल पर रहना या बिना उद्देश्य के समय बिताना बच्चों की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जो बच्चा आज अपने समय का सम्मान करना सीखता है, कशिश, वही भविष्य में अपने अवसरों का सही उपयोग कर पाता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से ये कहा जा सकता है साथियों कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें नागरिकों के बीच समानता, शिक्षा और सम्मान और सहयोग था अंजलि जी। आज हमारे सामने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी केवल सरकार या बड़े लोगों की नहीं है, बच्चे भी अपने स्तर पर इसमें योगदान जरूर दे सकते हैं। एक बच्चा ईमानदारी से पढ़कर, अच्छी आदतें अपनाकर, प्रकृति को बचाकर, दूसरों की मदद करके और गलत कामों से दूर रहकर देश के भविष्य को मजबूत बना सकता है।
0: बिल्कुल यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार बच्चा वह नहीं है जो हर काम में सबसे आगे दिखाई दे, बल्कि वह है जो अपने कर्तव्यों को समझे, अपने फैसलों के परिणामों को जाने और जरूरत पड़ने पर दूसरों के काम आए।
1: बिल्कुल।
0: वह अपने अधिकारों की बात करता है तो दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। वह अपनी सफलता के साथ समाज की प्रगति के बारे में भी सोचता है। आज अगर हमारे बच्चे स्वच्छता, ईमानदारी, अनुशासन, समानता, प्रकृति संरक्षण, सहयोग, संवेदनशीलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं कशिश, तो आने वाला भारत निश्चित रूप से अधिक मजबूत और बेहतर होगा।
1: बिल्कुल,
0: आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन आजादी की गरिमा बनाए रखना हमारी निरंतर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी की शुरुआत बचपन से ही होती है। इसलिए हर बच्चे को ये विश्वास होना चाहिए कि वह छोटा जरूर है, लेकिन उसकी अच्छी आदत, उसका अच्छा विचार, उसका छोटा सा प्रयास भी देश के भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आज का जिम्मेदार बच्चा ही कल का जागरूक नागरिक है और आज के जागरूक नागरिकों से ही मजबूत, संवेदनशील और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता है।
1: जी हाँ दिले जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर जुबा पर सर्वधर्म सद्भाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

दर्शन पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये फल और फूल उगाए कैसे।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

0: चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, हर गांव बने मजबूत, हर नागरिक बने जिम्मेदार, यही हो 80 साल की आजादी के बाद स्वराज का नया आधार।
1: जी हां, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर,
0: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपने साथी जागृति भट्ट।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।
0: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। जैसा की शुरुआती चंद पंक्तियों से आपको पता चल ही गया होगा की आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस को लेकर। श्रोता साथियों, आज का हमारा विषय है आपसे बातचीत का 80 साल की आजादी, स्वराज की राह पर हमारा अगला कदम।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आजादी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हर पीढ़ी की एक नई जिम्मेदारी है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने विदेशी शासन की बीड़ियों से मुक्ति पाई थी। उस दिन करोड़ों भारतीयों ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था अंजलि।
1: जी जी।
0: ऐसा भारत जहाँ निर्णय हमारे अपने हो, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे और देश अपने पैरों पर खड़ा हो। आज आजादी के 80 साल पूरे होने के अवसर पर हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हमारी आजादी की यात्रा केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सीमित है, या अब हमें स्वराज की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाना है?
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, इन सवालों के जवाब आज हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य मिलेंगे। लेकिन शुरुआत में कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए क्यों ना एक प्यारा सा देशभक्ति गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें?
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत।

0: साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं 80 साल की आजादी, स्वराज की राह पर हमारा अगला कदम।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, 80 साल की आजादी केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं है, यह आत्मचिंतन, मूल्यांकन और नए संकल्प का समय है। इन वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग, तकनीक, स्वास्थ्य, संचार और लोकतंत्र के क्षेत्र में देश ने लंबी यात्रा तय की है। गांव तक सड़कें, बिजली, संचार और डिजिटल सुविधाएं पहुंची है। भारत आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन जागृति जी, विकास की इस यात्रा के साथ कुछ सवाल भी हमारे सामने आए हैं कि क्या हर गांव आत्मनिर्भर हो रहा है, क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित हैं, क्या स्थानीय लोगों को अपने विकास में निर्णय लेने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है, इसी के साथ क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से समझते हैं। इन सवालों के बीच स्वराज

0: तो श्रोताओं, स्वराज अधूरा रह जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम अपने आसपास गंदगी देखते हुए भी उसे साफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पानी की बर्बादी रोकने के लिए कदम न उठाएं, स्थानीय संसाधनों की रक्षा न करें और ग्राम सभा में भाग न लें, तो हम स्वराज की भावना को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज तब मजबूत होगा जब शासन और समाज दोनों मिलकर विकास की जिम्मेदारी निभाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, आजादी के बाद भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया। गरीबी, अशिक्षा, खाद्य संकट, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं देश के सामने थी।
0: बिल्कुल,
1: धीरे धीरे भारत ने इन चुनौतियों से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाए। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के विस्तार ने नई पीढ़ी के लिए अवसर खोले। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने भारत को नई पहचान दी। संचार क्रांति और डिजिटल तकनीक ने गांव और शहर के बीच दूरी कम की। लेकिन श्रोता साथियों, विकास का अगला चरण केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए। अब जरूरत ऐसे विकास की है जिसमें प्रकृति, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल अंजलि, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये केवल एक भावनात्मक कथन नहीं है बल्कि ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक भूमिका को समझने का आधार भी है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, देश की बड़ी आबादी आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसीलिए स्वराज की वास्तविक शुरुआत गाँव से ही होनी चाहिए। एक मजबूत गांव वो है जहां लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी हो, ग्राम सभा सक्रिय हो, स्थानीय समस्याओं पर सामूहिक चर्चा हो और समाधान के लिए लोग मिलकर आगे आए।
1: जी जी,
0: गांव में पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार जैसे मुद्दों पर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब गांव अपने संसाधनों की पहचान करके उनका संरक्षण और बेहतर उपयोग करना सीखेंगे, तब स्वराज की नींव और मजबूत हो जाएगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम जान रहे हैं कि 80 साल की आजादी, स्वराज की राह पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था, गांव मजबूत होंगे तो स्वराज मजबूत होगा। यहीं अब बात आती है जल, जंगल और जमीन की रक्षा की। श्रोता साथियों, स्वराज की राह प्राकृतिक संसाधनों से होकर गुजरती है।
1: बिल्कुल,
0: पानी, जंगल और जमीन केवल आज की जरूरत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की विरासत भी है। जागृति जी, हम देखते हैं कि आज कई क्षेत्रों में पानी का संकट बढ़ रहा है, भूजल का स्तर प्रभावित हो रहा है और जल स्रोत पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में श्रोता साथियों, पानी की हर बूंद को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वर्षा जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, जल स्रोतों की सफाई और पानी का विवेकपूर्ण उपयोग, जिससे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी तरह जंगल केवल लकड़ी या ईंधन का स्रोत नहीं है, वे हमारी जलवायु, मिट्टी, जल स्रोत और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए स्वराज का अर्थ यह भी है कि हम प्रकृति पर अधिकार जमाने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखें।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि स्वराज का एक महत्वपूर्ण आधार आर्थिक आत्मनिर्भरता है। जब किसी गांव में स्थानीय स्तर पर उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो लोगों की बाहरी निर्भरता कम हो जाती है। स्थानीय कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, छोटे व्यवसाय, पारंपरिक कौशल और स्थानीय सेवाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है।
0: जी जी,
1: हमें स्थानीय उत्पादों को सम्मान देना होगा। स्थानीय कारीगर, किसान और छोटे उद्यमी केवल अपनी आजीविका नहीं चला रहे होते हैं बल्कि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाते हैं।
0: जी जी,
1: तो श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय को सम्मान और स्थानीय को अवसर, ये सोच स्वराज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बना सकती है।
0: जी हाँ जागृति जी, किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से भी तय होता है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने, सवाल पूछने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज के लिए ऐसी शिक्षा जरूरी है जो बच्चों को अपने समाज और प्रकृति से जोड़े, उन्हें संविधान, लोकतंत्र, अधिकारों और कर्तव्यों की समझ दे, उन्हें स्थानीय समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान खोजने के लिए प्रेरित करें। जब शिक्षित नागरिक अपने गांव, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे तब लोकतंत्र, स्वराज दोनों मजबूत होंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज का युवा भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। तकनीक, शिक्षा और नई सोच ने युवाओं के सामने अनेक अवसर खोले हैं। लेकिन जागृति जी, युवा शक्ति का अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, देश और समाज के विकास में योगदान देना भी युवा शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवा अपने गांव में शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, डिजिटल जागरूकता, खेल, नवाचार और स्थानीय रोजगार जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज का युवा यदि यह सोच ले कि समस्या मेरी भी है और समाधान में मेरी भी भूमिका है तो स्वराज की यात्रा बहुत तेज हो सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। इसी तरह हम हमारे महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी से भी स्वराज मजबूत होता है। श्रोताओं कहना चाहेंगे कि स्वराज का अर्थ ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ लोकतंत्र में भागीदारी ही सच्ची नागरिकता है। जैसे कि लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन मतदान करने का नाम नहीं है, लोकतंत्र निरंतर भागीदारी की प्रक्रिया है।
0: बिल्कुल,
1: सड़क पर कचरा न फेंकना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानूनों का पालन करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सभी स्वराज की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं। 80 साल की आजादी के बाद भारत एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां डिजिटल तकनीक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। अंजलि, मोबाइल और इंटरनेट ने जानकारी तथा सेवाओं को लोगों के करीब जरूर पहुंचाया।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। गलत सूचना को बिना जांचे आगे बढ़ाना समाज में भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए श्रोताओं, डिजिटल साक्षरता और तथ्य की जांच आज के नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: तकनीक का उपयोग शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा और सामाजिक जागरूकता के लिए किया जाए तो यह स्वराज को नई ताकत दे सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, भारत की पहचान उसकी विविध संस्कृति, लोक परंपराओं, भाषाओं, कलाओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली में है। विकास का अर्थ अपनी जड़ों को भूल जाना नहीं है। हमें आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाते हुए अपनी लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को भी सुरक्षित रखना होगा।
1: बिल्कुल,
0: विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण समुदाय के पास प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का गहरा अनुभव है। उनके पारंपरिक ज्ञान से हमें जल, जंगल, खेती और जैव विविधता के संरक्षण की अनेक सीख मिल सकती है। इसलिए भविष्य का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ आधुनिकता की गति और परंपरा की गहराई जो है साथ साथ चले।
1: बिल्कुल, आजादी के 80 साल हमें एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा करते हैं श्रोताओं। हमने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी भी है।
0: बिल्कुल,
1: आने वाले वर्षों में हमारा लक्ष्य ऐसा भारत होना चाहिए जहां गांव आत्मनिर्भर हो, किसान सम्मान के साथ आगे बढ़े, बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, युवाओं को अवसर मिले, महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में बराबर भाग लें, प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे और हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझे।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा कि स्वराज को एक योजना या एक दिन का अभियान नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि हमारे अपने घर, गांव और व्यवहार से होती है।
0: जी जी।
1: श्रोताओं, यदि एक व्यक्ति पानी बचाता है, एक परिवार कचरा सही तरीके से संभालता है, एक युवा गांव की समस्या के समाधान में आगे आता है अंजलि, एक ग्राम सभा सक्रिय होती है और एक समुदाय अपने संसाधनों की रक्षा का संकल्प लेता है, तो यही छोटे कदम मिलकर बड़े स्वराज का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, 80 साल की आजादी हमारे लिए गौरव का विषय है। यह उन अनगिनत लोगों के संघर्ष, त्याग और सपनों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाना केवल इतिहास को याद करना नहीं बल्कि उनके सपनों को वर्तमान जीवन में उतारना है। आज जरूरत इस बात की है श्रोता साथियों कि हम आजादी को केवल अधिकार के रूप में न देखें बल्कि जिम्मेदारी के रूप में भी समझें। स्वराज का रास्ता सरकार से समाज तक, समाज से गांव तक और गांव से प्रत्येक नागरिक के व्यवहार तक जाता है। 80 साल पहले हमने परतंत्रता से आजादी हासिल की, अब हमारा अगला कदम ऐसा भारत बनाना होना चाहिए जो सोच में स्वतंत्र, निर्णय में सक्षम, अर्थव्यवस्था में मजबूत और प्रकृति के प्रति संवेदनशील और नागरिक जिम्मेदारी में सजग हो।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आइए 80 साल की आजादी के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम केवल तिरंगा फहराने का संकल्प न लें बल्कि अपने भीतर जिम्मेदारी की भावनाओं को भी मजबूत करें, क्योंकि आजादी हमें मिली है लेकिन स्वराज हमें मिलकर बनाना है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बस यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता केवल वो दिन नहीं जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आकाश में लहराया था। स्वतंत्रता वो चेतना है जो हमें अपने देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है।
0: जी जी।
1: हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था उसे साकार करना आज हमारी जिम्मेदारी है। आजादी के 80 साल बाद हमें ये मन में इच्छा रखनी होगी कि हम अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, संविधान के मूल्यों को मजबूत करेंगे और देश की एकता, अखंडता तथा विविधता की रक्षा करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझेंगे और छोटे छोटे प्रयासों से भारत को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है लेकिन उसकी रक्षा और उसे मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तिरंगा केवल हमारे हाथों में नहीं, हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे संकल्पों में भी लहराना चाहिए।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले देशभक्ति गीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। वीरों के बलिदान से मिली ये आजादी महान है। देश की मिट्टी का सम्मान करें, देश के लिए कुछ काम करें। एकता, भाईचारे और प्रेम से भारत को आगे बढ़ाएं। हर दिल में देशभक्ति की ज्योत जलाएं। अपने कर्मों से भारत का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को वागड़ रेडियो परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम घूमर हमारे वारी अमरी हित्य बोनने आपनी बोन अंजलीनू राम राम। आप सब हम रेडियो हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो ना 98.8 FM माते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में। जिम के बहन बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी गये हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है 15 अगस्त एटले स्वतंत्रता दिवस ने लेने जाणंगा। आज कार्यक्रम ने माध्यम थे की કે આઝાદી સિર્ફ આપણે દેશની આઝાદી નથી, બલકી આપણી બોનોનું સન્માન, શિક્ષા, આત્મનિર્ભરતા, અહંકારની હમજની આઝાદીનું એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે। આજે આપણે જાણંગા કાર્યક્રમની માધ્યમથી કે આપણી વાગડની બોને વાસ્તવમાં સ્વતંત્રતા દિવસનું જે મતલબ હે એ હરતે હમઝે ને હરતે સમાજના વિકાસ મેં એનું યોગદાન હે ને આગળી જઈને આપણે જે સો રહે એને ઈ આની હિક હરતે આલી શકે। तो घना कानी वाते आज कार्यक्रम में हमारी आप तक रहेगा, पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। तो भाई बोनो आप हमर दरेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 98.8 FM माते।

0: માઇન બોનું ગીત નો આયશો પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણે માન સ્વાગત કરો હું અમારે આજની કાર્યક્રમ ઘુમર મેં. જેમ કે ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાવી દીધું હતું ને વાતચીતની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી કે આજે આપણે કાર્યક્રમમાં જાણવા વાળા હો કે આઝાદી તો આપણને મળી હે પણ આપણી જે બોને હે એનાનું સન્માન શિક્ષા અને આત્મનિર્ભરતા અહંકારની સમજની આઝાદી એને હરતે હોવી જોઈએ ને હરતે હી આપણા દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપી શકે. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી વિશે વિશેષજ્ઞ એટલે મધુબોન જોડી રહી. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણની વાત ને મોરે કર આપણી વાતે. મેમ નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: મેમ આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું વાગર રેડિયો પરિવાર મેં. જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહી હૈ તો સબસે પહેલે મેં કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે આપકા પરિચય જાનના ચાહુંગી.
1: ધન્યવાદ અંજલી મુજે વાગર રેડિયો મેં આમંત્રિત કરને કે લિયે. જૈસા કી તુમને પહેલે બતાઈ દિયા કી મેરા નામ મધુ હૈ ઓર મેં જયપુર મેં રહેતી હું ઓર લંબે સમય સે મહિલાઓ ઓર બચ્ચો કે અધિકારો કે લિયે કામ કરતી રહી હું અલગ અલગ સંસ્થાઓ કે સાથ જોડ કે ઓર વર્તમાન મેં વાગધારા કે સાથ જોડ કે બચ્ચો કે લિયે ઓર મહિલાઓ કે લિયે કિસ તરહ સે ચીજો કો દેખા જાના ચાહિયે ઉનકે સ્વાસ્થ્ય કો ઉનકે પોષણ કો બચ્ચો કી શિક્ષા કો કિસ તરહ કી ભૂમિકા નિભા રહી હું.
0: બિલકુલ. તો જૈસા કી મેમ આપ મહિલાઓ કો લેકર બચ્ચો કો લેકર ઢેર સારે કાર્ય કરતી હૈ યહી આજ હમ દેખ રહે હૈ કે હમ સ્વતંત્રતા દિવસ મના રહે હૈ તો આજ સબસે પહેલે કાર્યક્રમ મેં આપસે મેં યહી જાનના ચાહુંગી કે સ્વતંત્રતા દિવસ હમે અપને અધિકારો કે સાથ સાથ અપની જિમ્મેદારી કી ભી યાદ દિલાતા હૈ ઓર મહિલાઓ કી ઇસમેં ક્યા ભૂમિકા હૈ.
1: બહોત હી સહી સવાલ પૂછા
0: મેં.
1: क्योंकि स्वतंत्रता केवल अपने अधिकारों को जानने का नाम नहीं है बल्कि अपने परिवार समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी नाम है. हम भूल जाते हैं. हम अधिकारों को याद रखते हैं लेकिन जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसे नहीं भूला जाना चाहिए ना. फिर अगर अपन वागड़ क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो हमारी महिलाओं का परिवार और समाज एक महत्वपूर्ण आधार है. तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य हमारा पर्यावरण और परिवार और समुदाय से जुड़े निर्णयों में भाग लेकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
0: बिल्कुल.
1: जरूरत पड़ने पर वो अपनी बात पंचायत और ग्राम सभा तक भी पहुंचाए. दूसरी महिलाएं जो है गाँव की उनको भी जागरूक करे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाए. क्योंकि जब महिला अपनी बात कहती है और निर्णय प्रक्रिया में शामिल होती है तो समाज मजबूत होता है.
0: बिल्कुल.
1: और जैसे तुम जानती भी हो कि जब समाज मजबूत होगा तो लोकतंत्र खुद ब खुद मजबूत होने लगेगा.
0: बिल्कुल मैम. तो जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता जो दिवस हम मना रहे हैं तो इसमें महिलाओं की क्या इसमें भूमिका है और किस तरीके से महिलाएं जो है वो स्वतंत्र भारत और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना और भी योगदान दे सकती है. यही मैम अब मैं जानना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए ग्राम सभा और अन्य कोई भी मंच हो वहाँ पर भाग लेना क्यों जरूरी है और किस तरीके से उन्हें अपनी आवाज को मजबूत करना चाहिए.
1: ग्राम सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है. वो एक ऐसा मंच है जहाँ पर गांव के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: छोटे छोटे परिवारों से गांव बनता है और वो छोटे छोटे परिवार जब एक मंच पर आएंगे और मंच पे आकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेके बात करेंगे जैसे पानी है शिक्षा स्वास्थ्य सड़क रोजगार आंगनबाड़ी या बच्चों से जुड़े कोई भी मुद्दे हो सकते हैं जो डेली के रूटीन में या अपन दिनचर्या के हिस्से में जुड़ी हुई चीजें होती है जिनको लेके वो समस्याओं का सामना करती है.
0: बिल्कुल.
1: तो महिलाएं क्या होती है सीधे तौर पर इन चीजों के संपर्क में आती है और उनके अनुभव और उनकी आवाज इन निर्णयों को और भी अधिक सार्थक बना सकता है.
0: बिल्कुल.
1: इसलिए ग्राम सभा में जाना केवल भागीदारी नहीं है बल्कि वहाँ जाकर अपनी बात रखे बोले और अपने गांव के भविष्य को तय करने में अपनी भूमिका निभाना ही सक्रिय महिला नागरिकता स्वतंत्रता के सही अर्थ को मजबूत करती है.
0: बिल्कुल मैम. तो जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से महिलाओं का ग्राम सभा के मंच पर जुड़ना सहयोग करना और अपनी आवाज को मजबूत करना जरूरी है यही अब मैं जानना चाहूंगी कि क्या अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाना भी आजादी और विकास का हिस्सा है.
1: बिल्कुल अंजलि, मैं यही कहूंगी कि संस्कृति और परंपराओं को बचाना वास्तव में आजादी और विकास का हिस्सा है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि विकास का अर्थ ये नहीं है कि अपनी जड़ों से दूर हो जाओ। हाँ, हमारी बागड़ क्षेत्र की बोली, यहाँ के प्रचलित लोकगीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन और जीवन शैली को देखने के तरीके जो है, हमारी सामुदायिक परंपराएं यहाँ की पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी महिलाओं को उन परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो समानता, सहयोग और प्रकृति के सम्मान की सीख देती है, और जो भेदभाव या असमानता को बढ़ावा देती है उन्हें बदलने का साहस भी रखना होगा हमारी महिलाओं को।
0: बिल्कुल।
1: अपनी पहचान को बचाते हुए आगे बढ़ना ही वास्तविक विकास है।
0: बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से स्वतंत्रता में हमारी संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी शामिल होता है, यही मैम मैं अब जानना चाहूंगी कि महिलाएं अपने बच्चों को स्वतंत्रता का सही अर्थ कैसे समझा सकती हैं।
1: बिल्कुल, बचपन एक ऐसा समय होता है, वहीं से बचपन में ही एक इंसान की आगे बढ़ने की जो नींव है वो बढ़ जाती है, और उसमें महिला का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारी महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि वो बच्चों को बताए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है, आजादी के साथ जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी जुड़ा है।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को ये बताएं कि देश के स्वतंत्रता सेनानी के क्या संघर्ष थे, त्याग की क्या कहानियां थी, उनको जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करने की सीख दें, और वो अपने व्यवहार में भी अपनाएं। महिलाएं जब खुद अपने व्यवहार में अपनाएंगी, बच्चे देखेंगे और देख के भी सीखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बेटे और बेटी दोनों को समान अवसर देने की शुरुआत घर से ही होती है। तो जब बच्चे इस तरह की चीजें घर में होते हुए देखेंगे तो वो समान अवसर देना भी स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में शामिल कर सकेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से अगर अपन देखें तो बच्चों को प्रकृति, गांव और समाज की जिम्मेदारी समझ में आना भी जरूरी है। इस तरह माँ स्वयं बच्चों में जिम्मेदार नागरिक बनने की नींव रख सकती है, अपने व्यवहार में बदलाव लाके, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके और इन चीजों को अपना के।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी से हमें अवगत करवा रहे हैं, यही बात आती है मैम कि महिलाओं की शिक्षा को देश की आजादी से जोड़कर आप किस तरीके से देख सकती हैं?
1: देखो अंजलि, जो हमारा देश है कि आजादी के बाद से सबसे बड़ी जरूरत थी कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। महिलाओं की शिक्षा उस आजादी को वास्तविक अर्थ देती है। शिक्षा महिला को केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी देती है।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक मामलों में बेहतर निर्णय तो ले ही सकती है। इसके साथ साथ जैसे हमने ग्राम सभा की बात की थी, ग्राम सभा में भागीदारी निभाना भी जरूरी है।
0: जी जी।
1: तो जब उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो ग्राम सभा में भागीदारी भी निभाएगी और साथ में उसकी जानकारियाँ अलग अलग तरीके से खुलने लगेगी, जानकारियाँ प्राप्त करने के अवसर मिलने लगेंगे। तो सरकारी योजनाओं और अपने अधिकारों को समझकर परिवार और समाज के फैसलों में अपनी आवाज मजबूती से रख पाएगी। वागड़ में जो हमारी बेटियां हैं उनकी पढ़ाई को बीच में रोकने की बजाय उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है।
0: जी जी।
1: साथ ही बड़ी उम्र की जो महिलाएं हैं उनकी भी जरूरत के अनुसार नई नई चीजें सीखने के उनको अवसर मिलने चाहिए। जैसे आज के समय में डिजिटल और वित्तीय जानकारी भी महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी है। ये एक लड़की की शिक्षा केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी मजबूत करती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे वागड़ की जो महिलाएं हैं वो स्थानीय स्तर पर देश के विकास में क्या योगदान दे सकती हैं?
1: देखो, विकास का और खासकर देश के विकास को अगर हम देखें तो ये नहीं है कि बड़े बड़े शहर जो हैं वही विकास को देख सकते हैं। विकास गांव से शुरू होता है। तो वागड़ की महिलाएं खेती, पशुपालन में बेहतर तरीकों को अपनाकर परिवार की आय बढ़ा सकती है।
0: जी जी।
1: और स्थानीय उत्पाद जो होते हैं ना उनको बाजार से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर बना सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और ये सब हुआ जब एक हमारी वागड़ की महिला शिक्षा प्राप्त करेगी, शिक्षा से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएगी, ग्राम सभा के मंच से जुड़ेगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, महिलाओं के योगदान से, महिलाओं के विकास से, गांव के विकास से। इसी तरह से वो अगर स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ेगी तो वो सामूहिक रूप से मिलकर काम को बढ़ावा देगी और ग्राम सभा में भाग लेकर स्थानीय मुद्दों पर अपनी आवाज मजबूती से रख सकती है, जिससे गांव के साथ साथ देश का भी विकास को देखा जा सकता है।
0: बिल्कुल मैम।
1: इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगी अंजलि, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना और खासकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में और आदिवासी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जल संरक्षण के जितनी भी पुरानी परंपराएं होती थी
0: जी,
1: उसमें महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान देकर आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना सकती है। हमें ये समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा बड़े शहरों में होना जरूरी नहीं है
0: जी,
1: अपने गाँव में सकारात्मक बदलाव लाना भी देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
0: बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने हमें बताया कि महिलाएं जो हैं वो स्थानीय स्तर पर देश की आज़ादी में अपना क्या योगदान दे सकती हैं या देश के विकास में अपना क्या योगदान दे सकती हैं। यही अब बात आती है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को लेकर आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: अगर अपन देखें भारत के परिवारों को, समाज को, समुदाय को अगर हम देखें तो महिला हर जगह पे एक धुरी का काम करती है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो धुरी जितनी मजबूत होगी परिवार, समाज, समुदाय सब उतने ही मजबूत होंगे। तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य को परिवार की जरूरतों के पीछे नजरअंदाज नहीं करें। वो तभी अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती है जब वो स्वस्थ होगी, है ना। तो उसे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और नियमित स्वास्थ्य जांच को प्राथमिकता दे। और ये महिला खुद तो दे ही, परिवार को भी इसमें साथ देने की जरूरत है। उसके पति जो है, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, महिला जैसे सास है और परिवार के सदस्य हैं, उनको भी उसमें भागीदारी निभानी जरूरी है। और साथ में अगर वो किसी परेशानी का सामना कर रही है तो उसको चुपचाप सहना नहीं है। उसके बजाय वो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मान लो कि स्वास्थ्य को लेके ही वो परेशान है तो वो उचित स्वास्थ्य सेवा से मदद ले।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, सवाल पूछे, अपनी बात रखिए और अपने लिए निर्णय लेना आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा हिस्सा होता है।
0: बिल्कुल।
1: आत्मसम्मान का अर्थ है अपने साथ सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखना और अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं करना।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व मिलना जरूरी है जितना अन्य सदस्यों को मिलता है। स्वस्थ, आत्मविश्वासी और आत्मसम्मान से भरी महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि परिवार और समाज को भी मजबूती देती है।
0: बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो जैसा कि कार्यक्रम में हमने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को लेकर महिलाओं का क्या योगदान है उसको लेकर ढेर सारी बातें जानी, तो अंत में 15 अगस्त पर आप वागड़ क्षेत्र की महिलाओं और बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें कि वो किस तरीके से जागरूक बनी रहे और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे?
1: सबसे पहले मैं महिलाओं को, बेटियों को ये कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत कीजिए, अपनी आवाज को पहचाने, अपने अंतर की आवाज को पहचाने और अपने अधिकारों को जानो, समझो। और आप केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं बल्कि अपने गांव, समाज और देश के भविष्य को दिशा देने वाली एक शक्ति है। अपने उस शक्ति को पहचानो। मैं महिलाओं को ये कहना चाहूंगी, बागड़ क्षेत्र के हर व्यक्ति को ये संदेश देना चाहूंगी कि बेटियों को पढ़ाइए, उनके सपनों को उड़ान दीजिए, उन्हें सवाल पूछने और अपनी बात रखने के अवसर दीजिए।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही बेटों को भी समानता और सम्मान की सीख दें। शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की जानकारी को अपनी ताकत बनाइए और गांव के विकास में अपनी भागीदारी को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना अधिकार भी समझिए।
0: बिल्कुल।
1: एक दूसरे का साथ दें, महिलाओं को अपने संघर्ष में अकेला नहीं पड़ने दें। हमारी आजादी तभी सार्थक होगी जब हम हमारे घर की महिला, बेटी, सम्मान के साथ जी सकेगी, अपनी बात कह सकेगी, निर्णय लेने में भागीदारी निभाएगी और अपने सपनों को पूरा कर सकेगी।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी से अवगत करवाया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी अंजलि कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं चाहूंगी कि हमारे वागड़ क्षेत्र की हर महिला और हर बेटी एक जागरूक नागरिक बने। धन्यवाद।
0: जिम की भाई बोनू अवड़े अपने व्यस्त में मधुबन जुड़े तक ने એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તકી ઘણા આકાની વાતે વતાડી હે। એણે માધ્યમ તકી આપણે જાણ્યું કે આઝાદીનો સહી મતલબ હું હે, સમ્માન અવસર ને આત્મનિર્ભરતા ને હાથે હરતે આપણી બોને અગાડી વધી શકે, ને એને સાથે આપણી જે બોને હે એ અણદાડે હરતે આ સંકલ્પ લઈ શકે કે સૂર્ય ને સૂર્ય ને વેશ મે કારે ભી ફરક નહીં કરેંગા ને બેને સમાન અવસર આલેંગા। તો ભાઈન બોનો આશા કરું હું કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે એવી ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટ પડવાનું। તો સૂટ તો પડ, પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટ।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
6: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, आजादी केवल खुली हवा में सांस लेने का नाम नहीं है। आजादी उस सोच का नाम है जो डर के आगे झुकती नहीं। आजादी केवल अधिकार पाने की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को समझकर आगे बढ़ने की भी पहचान है। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जहां हम जीवन से जुड़े उन सवालों पर बात करते हैं जो हमें केवल सुनने नहीं बल्कि सोचने और कुछ नया करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जी हां, 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष, बलिदान और उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्र देखने का सपना देखा था। लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम इतिहास की घटनाओं को दोहराने के बजाय खुद से एक अलग सवाल पूछते हैं। आज हम जानेंगे कि देश आजाद है, लेकिन क्या हमारी सोच भी आजाद है। बातें कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं इस प्यारे से देशभक्ति गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। जैसा कि गीत से पहले विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है, हमें आजादी मिली है, अब अपनी सोच को आजाद हमें करना है। और जैसा कि आज कार्यक्रम का हमारा पहला सवाल था कि देश आजाद है लेकिन क्या हमारी सोच भी आजाद है? जी हाँ दोस्तों, क्या हम डर से आजाद हैं? क्या हम भेदभाव वाली सोच से आजाद हुए हैं? क्या हम दूसरों की नकल करने की मजबूरी से आजाद हुए हैं? क्या हम रूढ़ियों और गलत परंपराओं पर सवाल करने का साहस रखते हैं? और क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता से समझते हैं? आज का सपनों की उड़ान कार्यक्रम जो है वो इसी सोच की आजादी को समर्पित है। जानते हैं कि आजादी का सही अर्थ केवल बंधन से मुक्ति नहीं है। आजादी जो शब्द है वह सुनते ही हमारे मन में स्वतंत्रता संग्राम और देश की आजादी की तस्वीरें आती हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, लेकिन आजादी का एक और अर्थ भी है, वह है अपने भीतर की उन सीमाओं से मुक्त होना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार हमारे रास्ते में कोई बाहरी दीवार नहीं होती, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे मन में डर होता है। डर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लड़की होकर ऐसा करोगी? हमारे गांव के बच्चे इतना आगे नहीं जाते। ये वाक्य दिखाई नहीं देते, लेकिन कई बार

रुचि के अलग क्षेत्र में जाना चाहता है तो कहा जाता है कि सब लोग जो कर रहे हैं वही करो। लेकिन बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है श्रोता साथियों, जहां कोई व्यक्ति पहली बार पूछता है क्यों। स्वतंत्रता का जश्न मनाना हमारा अधिकार है, तिरंगा फहराना भी गर्व की बात है, लेकिन साथियों देशभक्ति के गीत सुनना मन में उत्साह भरता है। लेकिन देशभक्ति केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, जब हम अपने गांव को साफ रखते हैं यह देशभक्ति है, जब हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते तो यह देशभक्ति है, जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह देशभक्ति है, जब हम बेटियों और महिलाओं को सम्मान करते हैं तो ये भी देशभक्ति है, जब हम बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तो ये देशभक्ति है, जब हम गलत जानकारी को बिना जांचे आगे नहीं फैलाते तो यह भी जिम्मेदार नागरिकता है। तो दोस्तों 15 अगस्त और हमारी जिम्मेदारी कुछ इस तरीके से हमें समझने की जरूरत है। बातें निरंतर और भी कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी, कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है आजादी और युवा की। जी हाँ, देश की युवा पीढ़ी के सामने आज एक अलग तरह की चुनौती है। आज लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं, आज लड़ाई है निराशा से, नशे से, गलत जानकारी से, भेदभाव से, अंधी नकल से और उस सोच से जो कहती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। युवा अगर इस सोच को बदल दे तो यकीन मानिए श्रोता साथियों, उनके सामने संभावनाओं की पूरी दुनिया खुल सकती है।

स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे समाज में हर लड़की को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का कितना अवसर मिलता है। आजादी का अर्थ यह नहीं कि परिवार या समाज की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि बेटियों को भी शिक्षा, सम्मान, सुरक्षित वातावरण, अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक लड़की जब पढ़ती है, अपने फैसले समझदारी से लेती है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, उसका पूरा परिवार उससे सीखता है। जी हाँ, जिस घर की बेटी अपने सपनों के बारे में खुलकर बात कर सके, वह घर केवल बड़ा नहीं, सोच से भी समृद्ध होता है। साथियों, हमारा जो गांव है वो देश की आत्मा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन गांव को मजबूत बनाने के लिए केवल सरकार की योजनाएं पर्याप्त नहीं है, गांव के लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। ग्राम सभा में सवाल पूछना, अपने अधिकारों को समझना, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना, जल और जंगल की रक्षा करना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, स्वच्छता बनाए रखना, ये सब हमारे सामुदायिक जीवन को मजबूत करते हैं। सच्ची आजादी तब महसूस होती है जब लोग अपने गांव के विकास में अपनी भूमिका समझते हैं। बच्चों को आजादी का अर्थ भी हमें समझाने की जरूरत है, क्योंकि बचपन से ही जो नींव हम बच्चों के अंदर डालते हैं वो आगे चलकर बनी रहती है, और देशभक्ति की नींव हमें बच्चों में बचपन से ही डालनी है। श्रोता साथियों, बच्चों से केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम 1947 में आजाद हुए थे, उन्हें हमें यह भी बताना होगा कि आजादी का मतलब है कि अपनी बात सम्मान से कहना, दूसरों की बात सुनना, गलत चीज का विरोध करना, अपने अधिकार जानना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और अपने देश व समाज के प्रति जिम्मेदार बनना। बच्चे आज के छोटे नागरिक हैं, लेकिन कल की दिशा उनके हाथों में होगी। इसी के साथ दोस्तों, क्या आजादी का मतलब मनमानी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब है नहीं। आजादी और मनमानी एक जैसे नहीं है। यदि मेरी आजादी से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सड़क पर नियमों का पालन करना होगा, सार्वजनिक जगह पर अनुशासन रखना होगा, दूसरों की निजता का सम्मान करना होगा, किसी के साथ भेदभाव न करना, यही जिम्मेदार स्वतंत्रता है। जी हाँ, अधिकार हमें ताकत देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उस ताकत को सही दिशा देती है। साथियों, अपनी सोच को आजाद करने के कुछ 5 रास्ते हैं आसान से, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला, खुद से सवाल पूछिए कि हर पुरानी बात गलत नहीं होती, लेकिन हर पुरानी बात को बिना समझे मानना भी जरूरी नहीं। सीखना जारी रखिए, क्योंकि ज्ञान सोच की सीमाएं खोलता है। डर को पहचानिए, क्योंकि हर डर के पीछे रुकना जरूरी नहीं है। दूसरों की नकल से बचिए, अपनी परिस्थितियां और अपनी क्षमता को पहचानिए। अपने साथ समाज को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच्ची प्रगति तब है जब आपकी सफलता का लाभ आपके आसपास के लोगों तक पहुंचे। श्रोता साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल झंडा फहराने का नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी स्वतंत्रता का अर्थ उतारने का संकल्प लें। हम डर के कारण सही बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे, हम भेदभाव को सामान्य नहीं मानेंगे, हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे, हम अपने गांव, अपने समुदाय और अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाएंगे, हम बच्चों और युवाओं को सपने देखने के साथ उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराना चाहिए, हमारे विचारों में भी लहराना चाहिए। देश की आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन एक बेहतर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। जिस देश का युवा जागता है, उस देश का भविष्य जागता है। जिस समाज की सोच बदलती है, उस समाज की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगती। 15 अगस्त हमें केवल यह याद नहीं दिलाता कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, यह हमें यह सोचने का अवसर देता है कि उस स्वतंत्रता का उपयोग हम किस तरह कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें एक स्वतंत्र देश दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे एक जिम्मेदार, संवेदनशील और शिक्षित और मजबूत समाज में बदलने में अपना योगदान दें। आजादी का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमारे ऊपर कोई शासन न करे, आजादी का अर्थ यह है कि हम अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि गलत बात के सामने चुप न रहें, अपने डर को इतना छोटा करें कि वह अपने सपनों से बड़ा न हो, अपनी जिम्मेदारियों को इतना समझें कि हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे के अधिकार को नुकसान न पहुंचाए। इस 15 अगस्त को जब तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, तो एक पल के लिए हमें अपने आप से पूछना है कि मैं अपने देश की आजादी को अपने जीवन में किस अच्छे काम के रूप में उतार सकता हूँ।
शायद आपका उत्तर बहुत छोटा हो। किसी बच्चे को पढ़ाना, एक पेड़ लगाना, गांव की सफाई में योगदान देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, बेटी को पढ़ने देना, किसी गलत अफवाह को आगे न बढ़ाना या अपने भीतर के डर को पहली बार चुनौती देना, यही छोटी छोटी शुरुआतें मिलकर बड़े भारत का निर्माण करती है। श्रोता साथियों, आजादी का जश्न एक दिन मनाइए, लेकिन आजादी की जिम्मेदारी हर दिन निभाइए। तिरंगा हाथ में उठाना गर्व है, लेकिन तिरंगे के मूल्यों को जीवन में उतारना उससे भी बड़ा गर्व है। आइए इस 15 अगस्त पर हम केवल यह न कहें कि भारत माता की जय, बल्कि अपने हर अच्छे काम से यह साबित करें कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और उसके भविष्य के प्रति सच में जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, बातें आज कार्यक्रम में हमारी आपसे ढेर सारी हो गई हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।